0: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
1: 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4-लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तनपोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई

0: नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मॉनसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है, अपने दिल की बात या सफलता के राज कभी किसी को न बताएं, ये आपको कमजोर कर सकते हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षेप में विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 273। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला वर्षा चौमासा, कलाकार गायिका शुभा मुद्गल, भाग 7, प्रस्तुति कांचन प्रकाश संगीत की। सात बजे से भूले बिसरे गीत 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। आठ बजकर 15 मिनट पर सुनिए वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, आज भाग 40। 8:30 पर चित्रलोक, 9:30 पर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार जे ओम प्रकाश पर, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। 10 बजे सुबह पिटारा में हेलो फरमाइश, संवादक मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 11 बजे रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला।

सफर 2 बजे सुनिएगा वंदे मातरम एक जयघोष। लेखक है मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, भाग 40। 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे हेलो सहेली, 4 बजे पिटारा में सुनिए गीतों भरी कहानी, दिल की गिरह ये कहानी सुनिएगा गीतों भरी कहानी में पिटारा के अंतर्गत, लेखिका विनीता अस्थाना, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। पांच बजे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर संगीत सरिता। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनेगा शाम 7 बजे से, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें। अनमोल यादें इसके अंतर्गत सुनिएगा फिल्मकार पत्रकार राजीव विजयंकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत का 6वां भाग, प्रस्तुत करता है जुबैर खान। हवा महल में रात 8 बजे नाटिका हृदय परिवर्तन, मूल कहानी ओ हेनरी, हिंदी नाट्य रूपांतर रमेश उपाध्याय, निर्देशक मधुप शर्मा। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम रात सुनेगा फिल्मकार जय ओम प्रकाश पर केंद्रित होगा प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। 10 बजे छाएगी, 10:30 पर ढलती जाए रात, और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्रीराम चरित मानस गान, भाग 273।

स्त्री तथा राज्य पाकर सुग्रीव विषय भोग में ऐसा रत हुआ कि उसे अपने उद्धारकर्ता के अनुरोध की भी सुधि न रही। राम का क्षोभ देख लक्ष्मण कुपित होकर पूरी किष्किंधा नगरी को जलाकर राख कर देने को उद्यत होते हैं। हनुमान से अपनी विस्मृति की बात सुनकर सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं। वानर सैनिकों को बुलाकर 15 दिनों की अवधि के भीतर जनक नंदिनी सीता की खोज खबर लाने का आदेश देते हैं। क्रुद्ध लक्ष्मण के सम्मुख सिर नवाकर बालीपुत्र अंगद अपने राजा की निष्क्रियता के लिए क्षमा याचना करते हैं।

0: संगीत सरिता के श्रोता मित्रों, वर्षा चौमासा श्रृंखला की आज की कड़ी में अब मैं पूछती हूँ शुभा जी से, आज वो किस राग के बारे में बात करेंगे?
1: राग का नाम तो देस है और बहुत ही सबको परिचय भी होगा इस राग से। इसका ऐसे यानी मल्हार का जैसा संबंध है वर्षा ऋतु से, वैसे तो नहीं संबंध है क्योंकि देस में आपको हर प्रकार की बंदिशें मिलेंगी, लेकिन वर्षा संबंधित साहित्य भी देस में काफी मिलता है। और मुझे लगा कि ऐसा कुछ साहित्य, ऐसा एक पद प्रस्तुत किया जाए जिसमें प्रकृति का चित्रण तो हो ही, लेकिन कुछ ऐसी बात हो जो कि जिसमें प्रकृति ही स्वयं वृंद के रूप में

0: वर्षा मंगल मना रही हो।
1: प्रकृति स्वयं वृंद के रूप में, मतलब ये जैसे वृंद गान का ही ये हो गया
0: जी, तो मतलब एक पूरा ऑर्केस्ट्रा जो है वो प्रकृति जो है तैयार कर चुकी है वर्षा की बधाई देने के लिए
1: जी।
0: तो ये मुबारक नाम के कवि की रचना है और बिलग्राम जो जगह है उसके ये कवि हैं, वहाँ बहुत सारे कवि बहुत सारे साहित्यकार रहे और मुबारक लिखते हैं कि बाजत नगारे घन, घन के नगाड़े बज रहे हैं, ताल देत नदी नारे, ताल देत नदी नारे जो पानी लपलप करता है नदी नालों में वो भी ताल दे रहा है साथ में, झींगुरन झांझ, झींगुर जो है वो झांझ बजा रहे हैं, झींगुरन झांझ भेरी भृंगन बजाई है और भृंग जो है वो भेरी बजा रहा है, तो अब देख ली पूजा पूरा एक ऑर्केस्ट्रा तैयार है। बाजत नगारे घन ताल देत नदी नारे, झींगुरन झांझ भेरी भृंगन बजाई है, कोकिल अलापचारी
1: जी, तो कोकिल का काम है ही
0: अलाप करना, नीलग्रीव यानी नीलकंठ
1: पक्षी है
0: जी, नीलग्रीव नृत्यकारी वो गर्दन चला के नृत्य करता है, कोकिल अलापचारी नीलग्रीव नृत्यकारी पौन अर्थात पवन, पौन बीनधारी वो बीन बजा रही है, चाटी चातक लगाई है, उसके साथ जो चाटी बज रही है वो चातक की है।
1: कितना सुंदर। हाँ
0: कई अंतरे हैं इस पद में लेकिन मैंने एक तीन अंतरे चुने हैं गाने के लिए। मणिमाल जुगनू, वर्षा में यदि आप पहाड़ों में देखें तो जुगनू आपको दिखेंगे बारिश के समय में
1: जी।
0: मणिमाल जुगनू मुबारक तिमिर धार, अंधकार जो है उसमें जुगनू चमक रहे हैं ऐसे जैसे कि मणि की माला हो। मणिमाल जुगनू मुबारक तिमिर धार, चौमुख चिराग चारू चपला जराई है।
1: ये जो अनुप्रास है च च च का
0: जी बिल्कुल
1: जी, इसमें तो, श्लेष भी है
0: जी
1: और अनुप्रास भी है, यमक भी है
0: जी, और कितना देखिए चिराग जो है वो वैसे हिंदी भाषा का शब्द नहीं लगता लेकिन चौमुख चिराग चारू चपला जराई है, कितना बढ़िया एक जो सांझी हमारी विरासत है उसका एक छोटा सा उदाहरण है
1: जी।
0: बालम विदेश नए दुख को जन्म भयो, तो विरहनी के लिए हमेशा वर्षा ऋतु में बालम का साथ ना होना वो हमेशा दुख की,
1: और एक नया दुख है ये।
0: हाँ और तो है ही है कि बारिश हो रही है ये हो रहा है, सब लोग खुशी मना रहे हैं और हमारे हम क्या खुशी मनाएं। बालम विदेश नए दुख को जन्म भयो, पावस हमारे लिए विरह बढ़ाई है, उसने तो हमारे लिए बहुत ही विरह को और भी आग लगा
1: बढ़ाने
0: दी है
1: का काम कर दिया है। हालांकि ये वाद्य वृंद जो है वो अपनी चरम सीमा पे चढ़ जाता है और ऐसा ऐसा एक ध्वनि का एक समुदाय जो है वो बहुत खुशियां देता है, लेकिन विरहिणी के लिए वो कोई खुशी की बात नहीं, अलग से एक नया दुख उसने पाया है। तो शुभा जी आपके स्वरों में भी हम इस दुख को इस सुंदरता को महसूस करेंगे
0: जी, देश राग में और तीन ताल में
1: जी। अच्छा आप क्या देश राग का चलन पहले सुनाएंगे?
0: जी जरूर, वैसे इसे मिश्रित करके भी बहुत सारे लोग गाते हैं लेकिन मूल रूप इसका

0: तो राग देश में हमने सुनी मुबारक की रचना, बहुत ही बढ़िया सी बंदिश। बंदिश के तहत मैं दोनों रूप में सोचती हूँ कि शब्द रचना भी और संगीत रचना भी। और इसे स्वर देने वाली हमारी अतिथि कलाकार शुभा जी अभी इजाजत चाहते हैं। शुभा जी नमस्ते।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। आज भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं गीतकार गुलशन बावरा को। इन गीतों

गुलशन बाबरा का लिखा हुआ ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना। कल्याण जी, आनंद जी संगीतकार थे और फिल्म का नाम था चंद्रसेना। लीजिए अब सुनिए सुमन कल्याणपुर और मन्ना डे की आवाजों में गुलशन बाबरा का लिखा हुआ ये गीत, संगीतकार दत्ताराम, फिल्म का नाम डार्क स्ट्रीट।

0: हुस्न वाले आ बसे दिल में। हुआ है दिल वालों का मुश्किल जीना, किसी ने दिल लूटा किसी ने दिल छीना। इधर भी हसीना उधर भी हसीना, किसी ने दिल लूटा किसी ने दिल छीना। इधर भी हसीना।
1: गुलशन बाबरा का लिखा हुआ गीत अभी आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज़ में। संगीतकार थे रवि, फिल्म का नाम गर्ल्स हॉस्टल।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे पी एल संतोषी, संगीतकार थे कल्याण जी वीर जी शाह। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

0: सम्राट चंद्रगुप्त फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, सविता सिंह को नमस्कार।
1: हल्दी के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम, जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता,
2: अब सिर्फ 10 रुपए के सैशे पैक में भी।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मशहूरों में जान तो दांतों की शान, यही है वीको की पहचान।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

विश्वास फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थीं मुकेश और आशा भोसले की, गीतकार थे गुलशन बावरा, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। आज हमें रहे प्यार के कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं, सुंदर भाव और विलक्षण रचनाओं का स्मरण कर रहे हैं गीतकार गुलशन बावरा के। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: रफू चक्कर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे शैलेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार थे गुलशन बावरा, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हाय हाय,
4: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
5: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
4: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
6: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
4: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: कि हम तुम चोरी से

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
5: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
2: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर एमडीआर वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एनईएफटी के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। यूपीआई लेनदेन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
3: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स, इंडस्ट्री, मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
1: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
4: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के एसडीएम रजत कुमार और एडीएम धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी एनडीए विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा

0: करघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनकी शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्र और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्पकला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
3: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमरीका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज़। धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक

गैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू, अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए

0: करुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है। महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 40वीं कड़ी।

0: बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु पूरे देश में सभाएं होने लगी। इस आंदोलन की अधिकतर सभाओं का आरंभ या समापन वंदे मातरम से होने लगा। पढ़े लिखे लोग जब भी आपस में मिलते तो नमस्कार की जगह वंदे मातरम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते। वंदे मातरम इस गीत की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उसका दुष्प्रचार भी हुआ। वंदे मातरम की तुलना अन्य भाषाओं की कविता से करके उसमें कमियां दिखाने के प्रयास तत्कालीन कुछ लेखकों और संपादकों ने किए।
1: ১৯০৭ में लंदन के टाइम्स समाचार पत्र में हैदराबाद के दक्खन पोस्ट के संपादक सिद्ध मोहन मित्र ने वंदे मातरम के बारे में ऐसा ही भ्रमित करने वाला लेख लिखा था। फ्रांस के राष्ट्रीय गीत ला मार्सलेज का वंदे मातरम बंगाली संस्करण है और इसमें कुछ उत्तेजक शब्द जोड़कर लोगों को प्रेरित करने का कवि का प्रयास है, ऐसा उस लेख में लिखा गया था। इस लेख का भारत में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य समीक्षकों ने भी खंडन किया। पायोनियर के अंक में लिखा था, कविता की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से वंदे मातरम गीत अधिक अच्छा है। ला मार्सलेज में कवि का हृदय दिखाई नहीं देता, परंतु वंदे मातरम में कवि ने अपनी आत्मा समर्पित की है। फ्रांस और हिंदुस्तान के इन राष्ट्रीय गीतों में बहुत बड़ा अंतर है। वंदे मातरम एक प्रार्थना है। इसमें स्वदेश के आधार पर आद्य शक्ति को मां कहकर संबोधित किया गया है। मातृभूमि को केवल मां कहकर कवि रुका नहीं है, बल्कि मां के समान ही प्रेम और श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाया है। जो गीत देशवासियों को अपनी जन्मभूमि से मां के समान प्रेम करना सिखाता है, उस गीत की तुलना ला मार्सलेज गीत से कैसे हो सकती है।

0: वंदे मातरम शब्द अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंच गई। वंदे मातरम शब्द का उच्चारण करते हुए फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बाद अनेक क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते हुए शहादत स्वीकार करने लगे। लंदन में ही वीर सावरकर, सेनापति बापट, निरंजन पाल, मदनलाल धींगरा जैसे युवा क्रांतिकारियों के गुरुतुल्य श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा और मादाम कामा के साथ थे। अंग्रेजों की राजधानी लंदन में कर्जन वाइली नामक अंग्रेज अधिकारी पर गोलियां चलाने वाले मदनलाल धींगरा को फांसी की सजा सुनाई गई। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल धींगरा को पेंटनविले जेल में फांसी दी गई, पर उससे पहले उनका लिखा हुआ पत्र अंग्रेजों ने छुपा दिया था। सावरकर और ज्ञानचंद वर्मा ने भाग दौड़ करके फांसी से एक दिन पहले डेली न्यूज समाचार पत्र में मदनलाल धींगरा का चैलेंज नामक पत्र छपवाया और लंदन में सामान्य जनता से लेकर पुलिस तक सभी को धक्का लगा। इस पत्र की भाषा अत्यंत ओजस्वी तो थी ही, पर इस पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था। शब्दों के कारण केवल दो दिनों में इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक कई बड़े समाचार पत्रों ने इस पत्र को प्रसिद्धि दी, जिसके कारण भारतीय क्रांतिकारियों का आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों का दमन और वंदे मातरम शब्द दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। मदनलाल धींगरा लिखते हैं,
1: आत्म बलिदान कैसे करना चाहिए, यही एकमात्र शिक्षा इस समय हिंदुस्तान में देने योग्य है। यह शिक्षा देने का एक ही मार्ग है, स्वयं का बलिदान करना। इस भावना से प्रेरित होकर मैं प्राणार्पण कर रहा हूं और मुझे अपने बलिदान पर गर्व है। इस भारत माता की संतान के रूप में मेरा पुनर्जन्म हो और इसी पवित्र कार्य में मेरा शरीर, मेरा जीवन मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो जाए, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। भारतीय स्वाधीनता का पक्ष विजयी हो, मानव जाति के कल्याण और ईश्वर के वैभव का समर्थन करने वाला स्वतंत्र भारतवर्ष संसार में आत्म तेज से चमकने लगे, तब तक मेरे जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे ही चलता रहे, ऐसी मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। वंदे मातरम।
0: १९१४ के आसपास प्रथम विश्व युद्ध की हवाएं चलने लगी। उन दिनों कोमागाता मारू जहाज का किस्सा विशेष रूप से चर्चित रहा। इस जहाज के ध्वज पर वंदे मातरम, सत श्री अकाल और अल्लाह अकबर शब्द अंकित थे। बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में 360 भारतीय यात्रियों को लेकर कोमागाता मारू नामक जापानी जहाज 4 अप्रैल 1914 को हांगकांग से रवाना हुआ। 23 मई को ये जहाज जापान होते हुए कनाडा पहुंचा। ब्रिटिश सरकार के इशारों पर नाचने वाली कनाडा सरकार ने इस जहाज को बंदरगाह पर लगाने की अनुमति नहीं दी। 15 दिनों तक समुद्र में खड़े इस जहाज पर अन्न जल समाप्त हो गया। युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, अंततः सरकार को झुकना पड़ा। आगे वहां से निकला जहाज 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा और वहां हुई मुठभेड़ में 18 यात्री शहीद हो गए। इस पूरे प्रकरण के मुख्य नेता बाबा गुरुदत्त सिंह को वंदे मातरम शब्द अत्यंत प्रिय थे, इसीलिए इस जहाज के ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द थे।
1: विदेशों में बसे भारतीयों में वंदे मातरम शब्द के प्रति अत्यंत आदर भाव उत्पन्न हो गया था। वंदे मातरम के प्रति उनका प्रेम कई प्रसंगों से व्यक्त होता था। इसी दौरान वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने आयरलैंड में वंदे मातरम मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। अफ्रीका में 22 अक्टूबर 1912 को गोपाल कृष्ण गोखले केपटाउन और फिर जोहान्सबर्ग गए थे। हर जगह उनका वंदे मातरम के नारों से स्वागत हुआ।
0: २३ दिसंबर 1912 को

0: लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। उस समय इस षड्यंत्र के सूत्रधार लाला हरदयाल बरकले में थे। ये समाचार सुनने पर लाला हरदयाल सहित भारतीय छात्रों ने एक सभा की, जिसमें वंदे मातरम गीत गाया गया। एक साल बाद इस घटना की वर्षगांठ पर 23 दिसंबर 1913 को लाला हरदयाल ने भारतीयों के लिए एक पर्चा बांटा, जिसका नाम था शाबाश। इस पर्चे में लिखा था, गुलामों, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करोगे? हम कहते हैं बम की सहायता से। बम विद्रोह का संदेश वाहक है। शस्त्र की पूजा करो, शस्त्रों का अभिवादन करो। उस पर्चे के पहले भाग में बम बनाने की प्रक्रिया, दूसरे में उसकी उपयोगिता और तीसरे में बम की प्रार्थना दी गई थी। पत्रक का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था।
1: केवल कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका में ही नहीं, बल्कि जहां भारतीय नागरिक मुस्लिम देशों में थे, वहां भी वंदे मातरम पहुंच गया। विश्वयात्री रामनाथ विश्वास ने उस समय घटी घटनाओं को लिखा है। तुर्किस्तान में अदम नामक स्थान की मस्जिद पर तुर्की भाषा में वंदे मातरम शब्द लिखे थे, साथ ही हिंदुस्तान का झंडा भी था। शुक्रवार को सफाई के बाद नमाज के समय वंदे मातरम का उच्चारण होता था। वियना में अमेरिकन एसोसिएशन में रामनाथ के भाषण के बाद हिंदी लोगों ने वंदे मातरम का जय जयकार किया। बगदाद, तेहरान, इराक में हिंदी लोगों का वंदे मातरम के प्रति प्रेम उन्होंने अनुभव किया। भारत के बाहर वंदे मातरम पहुंच तो गया ही था, परंतु भारत में बंगाल विभाजन को लेकर जनमानस में भड़की आग अभी भी जल ही रही थी। सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 40वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस। अनुवाद, संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर। शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय। वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी। तकनीकी सहयोग किरण बंग। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

0: विविध भारती पर।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: बॉर्डर टू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे दिलजीत दोसांझ, परम्परा टंडन और सचेत टंडन की आवाजों में। कौसर मुनीर ने इस गीत को लिखा था, सचेत टंडन ने धुन बनाई थी।
1: आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय,
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मेरी ब्रदर की दुल्हनिया इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। नेहा वसीन और साथियों की आवाजें थी, इरशाद कामिल के बोल थे और सुहेल सेन का संगीत था। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: हक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कौशल किशोर ने इस गीत को लिखा था और विशाल मिश्रा का संगीत था। अली ब्रदर्स ने इस गीत को गाया था।
1: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है, नेशनल हैंडलूम डे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता के आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसी दिन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। 7 अगस्त सन 1905 को कोलकाता यानी तत्कालीन कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन का शंखनाद हुआ। इसके तहत भारत में बने विशेषकर हथकरघा उत्पादों को अपनाने का प्रण लिया गया। इस आंदोलन ने भारत के स्थानीय बुनकरों और कुटीर उद्योगों को नई जान प्रदान की थी, इसलिए उनके सम्मान में इस ऐतिहासिक तारीख को चुना गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हमें अपने कुशल बुनकरों के श्रम, उनकी मेहनत और उनकी कला का सम्मान करना सिखाता है और स्वदेशी आत्मनिर्भरता और भारतीय सांस्कृतिक विरासत को अपनाने की प्रेरणा देता है। कृषि के बाद हथकरघा क्षेत्र भारत के ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस उद्योग से जुड़े हुए बुनकरों और श्रमिकों में अधिकांशतः महिलाएं हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण का ये बड़ा माध्यम बना है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसकी शैलियां हैं। आज का ये दिवस कलाओं को जीवंत रखने में सहायता करता है।

राजी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में, गुलजार और आलम इकबाल का लिखा हुआ ये गीत था, शंकर एहसान लॉय की ये धुन थी।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय।

0: और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
1: मैं अगले दिन आशुतोष शुक्रवारी कर से मिलने गया। उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।

0: काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहा से हुजूर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रमना आ भागना प्रायोजक हता अशोक द ग्रेट। महासेलमा ब्रांडेड रेडीमेड मेन्सवेर अने सूज खरीदो अकल्पनीय डिस्काउंट साथे।

ब्रेक के बाद आइए आप सुनते हैं रांझणा फिल्म का ये गाना। ए आर रहमान और साथियों की आवाजें हैं।

ए आर रहमान और साथियों की आवाजों में ये गाना आप सुन रहे थे। रांझणा फिल्म से इरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। भारतीय साहित्याकाश में एक ऐसा नक्षत्र, या कहें कि साहित्य संगीत कला और दर्शन के आकाश में एक ऐसा नक्षत्र जिसकी आभा युगों युगों तक हमारा पथ आलोकित करती हैं, वे हैं गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय साहित्यकार, शिक्षाविद और मानवतावादी गुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी लेखनी से केवल शब्द ही नहीं रचे, अपितु संवेदनाओं का एक विराट संसार रच दिया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला उनकी अनुपम देन है। शांति निकेतन के माध्यम से उन्होंने ऐसी शिक्षा का स्वप्न साकार किया जिसमें ज्ञान के साथ संस्कृति, संस्कार, सृजन और प्रकृति का अद्भुत समन्वय है। उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाएं हैं गीतांजलि, गोरा और चोखेर बाली, काबलीवाला और पोस्टमास्टर आदि। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित अमर रचनाएं रवीन्द्र संगीत विश्वभर में प्रसिद्ध है, जिनमें शब्द, संगीत और संवेदनाओं का अनुपम समन्वय देखने को मिलता है। आज कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सन 1947 भारत का विभाजन हो रहा था। एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाला एक प्रोडक्शन मैनेजर लाहौर से मुंबई की तरफ रवाना हो रहा था। जाने माने शायर कतील शिफाई उसके दोस्तों में से एक थे। दो दोस्त जुदा हो रहे थे और शायर दोस्त ने अपने फिल्मी दोस्त से विदा लेते हुए उसे एक शेर उपहार में दिया। कतील शिफाई ने एक पर्ची पर लिख कर दिया था, उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी हरजाई की। ये पर्ची उस लड़के ने संभाल कर रख ली। देश के विभाजन के वक्त लाहौर से मुंबई आने वाला वो प्रोडक्शन मैनेजर था जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश आगे चलकर फिल्मी दुनिया के एक बड़े निर्माता और निर्देशक बने। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई।

जी ओम प्रकाश का जन्म 24 जनवरी 1927 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब भारत अविभाजित था। ओम प्रकाश के पिता लाहौर के एक स्कूल में टीचर थे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को उसूल सिखाए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में तमाम उपलब्धियों से बढ़कर हैं आपके उसूल। पिता हमेशा बेटे से कहा करते थे कि आपको हमेशा जिंदगी में सीखते रहना है, ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और कभी ये मत मानो कि तुमने सब कुछ जान लिया है। और जानने की लालसा जिंदगी में बनाए रखना, देखना तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ओम प्रकाश लाहौर में एक फिल्म प्रोड्यूसर के दफ्तर में क्लर्क बन गए। बहुत लगन के साथ काम किया और फिर वो मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचे, यानी धीरे धीरे उनकी तरक्की होती चली गई। दिल में

0: पंछी।
1: हमने आपको बताया कि विभाजन के बाद जी ओम प्रकाश मुंबई आ गए। ये वो दिन थे जब उनकी जिंदगी का संघर्ष चल रहा था। संघर्ष के इन दिनों की रातें जे ओम प्रकाश लोकल ट्रेनों में सोकर बिताते थे। दादर से ट्रेन में बैठते, ट्रेन कल्याण तक जाती और फिर दादर वापस आती। जे ओम प्रकाश उस ट्रेन में ऊंघते रहते। जब पुलिस वाले देख लेते तो भगा देते थे, उतार देते थे। मुसाफिर थे जे ओम प्रकाश, चलते चले जाते थे लोकल ट्रेनों में अपनी मुफलिसी के दिनों में।

संघर्ष के इन दिनों में जे ओम प्रकाश को निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की कंपनी में काम मिल गया। ये वो दिन थे जब मोहन सहगल न्यू दिल्ली फिल्म बना रहे थे। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में जे ओम प्रकाश चिंचपोकली नाम के एक इलाके में चौल में रहा करते थे। अभिनेता राजेंद्र कुमार भी उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और वहीं उनके साथ रहा करते थे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब वो फिल्म उद्योग में बड़ा नाम बन जाएंगे तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये वादा पूरा भी हुआ। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर लगातार काम करते रहे और उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिल्में बनाने के हर पहलू पर गौर किया, उसे सीखा और उसमें माहिर बन गई।

60 के दशक का वो जमाना जब जे ओम प्रकाश के भीतर एक सपना पल रहा था, और वो सपना था प्रोड्यूसर बनने का सपना। उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की कि कोई ऐसा फाइनेंसर हो जो पैसे लगाने के लिए राजी हो जाए और उनकी फिल्म बन जाए। बहुत संघर्ष के बाद जब कहीं कोई उम्मीद नहीं बची थी, अचानक एक दिन फाइनेंसर का फोन आया, वो फिल्म में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए। इस तरह से 60 के दशक में जे ओम प्रकाश ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, फिल्म युग। फिल्म युग की पहली फिल्म आई आस का पंछी। इस फिल्म के हीरो थे वही राजेंद्र कुमार जो चिंच पोकली के संघर्ष के जमाने में जे ओम प्रकाश के साथ रहा करते थे। हीरोइन थी वैजयंती माला, संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक बनाए गए मोहन कुमार, जो मोहन सहगल के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म आस का पंछी जबरदस्त हिट रही और एक प्रोड्यूसर के तौर पर जे ओम प्रकाश और फिल्म युग छा गए।

0: कहां तक चले।
1: इसके बाद मोहन कुमार के ही निर्देशन में जे ओम प्रकाश ने अपने प्रोडक्शन हाउस फिल्म युग की दूसरी फिल्म पेश की, जिसका नाम था आई मिलन की बेला। ये फिल्म सन 1964 में आई थी। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे।
0: आहा, आई मिलन की बेला देखो आई बनके।

सन 1966 में जे ओम प्रकाश ने एक नए निर्देशक को मौका दिया। ये निर्देशक थे रघुनाथ झालानी, जो उन दिनों में बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। रघुनाथ झालानी ने बनाई आए दिन बहार के। मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और आशा पारेख।

सन 1969 में रघुनाथ झालानी ने ही बनाई आया सावन झूम के। ये भी जे ओम प्रकाश की एक बहुत जबरदस्त फिल्म थी। हाँ।

आपको बता दें कि जे ओम प्रकाश अक्सर ही नई प्रतिभाओं को मौका दिया करते थे। उन्होंने रघुनाथ झालानी को मौका दिया बतौर निर्देशक, जिन्होंने आए दिन बहार के बनाई। रघुनाथ झालानी बिमल रॉय के सहायक निर्देशक हुआ करते थे। इसी तरह उन्होंने मुकुल दत्त को मौका दिया और निर्देशन की दुनिया में उनका पहला कदम बना आन मिलो सजना।

सचिन भौमिक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे। उन्हें निर्देशन की दुनिया में मौका दिया जे ओम प्रकाश ने और फिल्म आई राजा रानी। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों के नाम हमेशा अ से हुआ करते थे। ये उनका एक अंधविश्वास था कि अगर वो फिल्मों के नाम अ से रखेंगे तो वो फिल्में ज्यादा चलेंगी। इत्तेफाक ये भी हुआ कि दो ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जिनके नाम अ से नहीं थे और वो ज्यादा नहीं चली, सचिन भौमिक के निर्देशन वाली राजा रानी और फिल्म भगवान दादा। ये दोनों फिल्में जे ओम प्रकाश के प्रोडक्शन से आई थीं और इनका नाम अ से नहीं था। वैसे अ से फिल्मों के नाम शुरू होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का ताल्लुक उसी घटना से है जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताई थी। सन 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब जे ओम प्रकाश के दोस्त मशहूर शायर कतिल शिफाई ने जुदा होते हुए एक पर्ची पर एक शेर लिखकर दिया था जे ओम प्रकाश को। कतिल शिफाई ने ये कहा था कि तुम चाहो तो इस शेर का इस्तेमाल आगे चलकर अपनी फिल्मों के लिए कर लेना। सन 1960 के जमाने में जब जे ओम प्रकाश प्रोड्यूसर बने और अपनी पहली फिल्म बनाने लगे, तो जो कहानी उनके पास थी वो थी एक नौजवान की कहानी जो फौज में जाना चाहता है और उसके परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। इस फिल्म का नाम उन्होंने कतिल शिफाई के इस शेर में से ही लिया, आस का पंछी। आगे चलकर कतिल शिफाई ने जे ओम प्रकाश को चिट्ठी लिखी और कहा, देखा मेरा शेर तुम्हारे कितने काम आया।

छू लूंगा आसमां को बढ़कर, राही तो रुक ना सकेगा दुनिया के रास्तों पे चलकर। दिल मेरा एक आस का पंछी।

जी ओम प्रकाश फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से डूब जाना चाहते थे, यानी फिल्म बनाने के हर पहलू पर जुनून की हद तक उनका ध्यान था। चूंकि वे फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उनकी रचनात्मक प्यास अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझ रही थी और इसके लिए उन्होंने निर्देशक बनने की ठानी। सन 1973 में वो निर्देशक बन गए फिल्म आपकी कसम के जरिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार। वैसे आपको बता दें, आपकी कसम सन 1970 में आई के एस

तू माधवन की फिल्म वजवे मायम पर आधारित थी, लेकिन ये जे ओम प्रकाश की फिल्मी समझ थी कि उन्होंने मूल मलयालम फिल्म के अंत को बदल दिया। मूल मलयालम फिल्म में पति और पत्नी दोनों ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जे ओम प्रकाश ने फिल्म आपकी कसम का अंत कुछ इस तरह से रखा कि पति पत्नी के कदमों में अपना दम तोड़ता है और इस तरह से वो अपना प्रायश्चित करता है।

जाने माने निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा ने आपकी कसम को देखकर ये कहा था कि ये फिल्म किसी नए नवेले निर्देशक का काम नहीं लगती, बल्कि एक बहुत पके हुए और समझदार निर्देशक का काम लगती है। जे. ओम प्रकाश ने इसके बाद बनाई आंखों आंखों में।

फिल्म युग हमेशा अपनी सामाजिक फिल्मों के लिए जाना जाने वाला फिल्म बैनर रहा। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो परिवार के साथ देखी जा सकें या जिनमें कोई सामाजिक पहलू हो। जे ओम प्रकाश ने इस तरह से मनोरंजक और खुशनुमा फिल्में बनाने वाले एक निर्माता निर्देशक के तौर पर अपना नाम स्थापित कर लिया था। सन 1975 में उन्होंने निर्देशन किया फिल्म आक्रमण का। सन 1975 जे ओम प्रकाश के करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण साल बन गया जब उन्होंने कमलेश्वर की कहानी पर गुलजार के निर्देशन वाली फिल्म प्रोड्यूस की

इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुचित्रा सेन और संजीव कुमार। सन 1977 में जे ओम प्रकाश ने फिल्म अपनापन का निर्माण और निर्देशन किया। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश ने बाहर की कई फिल्मों का निर्देशन किया, यानी ऐसी फिल्में जिन्हें उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था। ऐसी ही एक फिल्म थी सन 1977 में आई आशिक हूं पहाड़ों का। सन 1981 में आई फिल्म आसपास के निर्देशक जे ओम प्रकाश ही थे। इस फिल्म की एक खासियत आपको बता दें, मशहूर गायक मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनका जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया गया था वो फिल्म आसपास के लिए ही किया गया था। सन 1980 में जे ओम प्रकाश ने बनाई अपनी जबरदस्त कामयाब फिल्म आशा।

सन 1982 में अपना बना लो, सन 1983 में आई अर्पण, 1985 में आपके साथ।

जी ओम प्रकाश ने इस बीच में कई फिल्में बनाई जिनमें से कुछ बहुत कम चली और कुछ नहीं चली। सन 1993 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म का निर्देशन किया था जिसका नाम था आदमी खिलौना है। जी ओम प्रकाश अपने फिल्मी करियर में इम्पा के प्रेसिडेंट रहे, इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट भी रहे और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी उन्होंने जमकर काम किया। वो फिल्मी दुनिया से रिटायर हो चुके कलाकारों के कल्याण में लगे रहे थे।

0: आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक जी ओम प्रकाश पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, पर या तो बिल्कुल बाकी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि

0: मैं इसे कहाँ संभालू, किसे दिखाऊं
1: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: हेलो विविध भारती
1: मैं महेश कावा बोलता हूँ
0: जी। महेश जी कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है मैडम, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया। क्या काम करते हैं आप?
1: मैं अभी रिटायर हूँ मैडम। हाँ, ऊपर घर के नीचे दुकान है,
0: अच्छा
1: ऊपर रहते हैं, लड़का दुकान संभालता है मैडम। वो मैडम मेरे को गाना सुनने का है, दुल्का फुल्का तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, ऐसा गाना है न?
0: जी ठीक है। तो महेश जी आपको पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।
1: थैंक यू।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है तर तर नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है। बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: का मालिक करता नहीं बार है, और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: दोस्तों, ये था आज का फोन इन प्रोग्राम। आपके फोन कॉल्स, आपके पसंदीदा गीत, इसी तरह आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। करना है सिर्फ एक फोन कॉल। हर सोमवार सुबह 10 से 11 के बीच हमें रहता है आपके फोन कॉल्स का इंतजार। हमारा यानी वडोदरा का एसटीडी कोड है 0265। जी हाँ दोस्तों, 0265। और हमारा कॉलिंग नंबर है 2648495। आई रिपीट, 2648495। तो मिलते हैं अगले फोन इन प्रोग्राम में। तब तक के लिए पायल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड बाय। दोस्तों, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा विविध भारती के वडोदरा केंद्र से।
1: श्रोता मित्रों, पायल शर्मा द्वारा प्रस्तुत फोन इन कार्यक्रम आप सांभळी रह्या हता। अने हवे सांभळीए मणिकर्णिका फिल्म नो आ गीत।

दोस्तों, सांस्कृतिक वारसाने जीवंत राखनार, हाथ वणाट करनारा, जे हाथोथी वणाट करे छे, तेमने सम्मानित करवा, स्वदेशी विरासतथी लोको जागृत थाय, उत्पादनोना महत्व विशे जाणे अने जुदा जुदा उत्पादनोथी वधु लोको जागृत थाय, आ उद्देश्यथी आ दिवस उजवामां आवे छे, नेशनल हेन्डलूम दिवस।

0: लोकसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानियों और देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में सदन में कुछ देर का मौन भी रखा गया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदन की कार्यवाही का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। मैं आपसे हर बार आग्रह करता हूं, लेकिन आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। सदन चर्चा संवाद और विशेष रूप से प्रश्नकाल के अंदर माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए होता है। मेरा आपसे आग्रह, आप प्रश्नकाल चलने दें। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये विहार आचरण आपका उचित नहीं है।
0: लगातार हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली सरकार पर सीएजी की रिपोर्ट पेश करेंगी। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा दिल्ली ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट निरसन विधेयक 2026 भी पेश करेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी सदन में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग खुली पहुंच के लिए नियम और शर्तें द्वितीय संशोधन विनियमन 2026 और दिल्ली शिक्षा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने का आदेश 2026 की प्रतियां पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। एनसीपीआई सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। समारोह में 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक स्नातक छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में रांची में जारी प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमरीका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्रिट्स का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंडमास्टर जाओखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। गृहमंत्री अमित शाह ने सिख धर्म के 8वें गुरु श्री गुरु हरकिशन साहिब के प्रकाश पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि बाला प्रीतम के नाम से विख्यात श्री हरकिशन साहिब ने ज्ञान, करुणा और सेवा भाव के माध्यम से समाज को सद्भाव का मार्ग दिखाया। श्री शाह ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश।

0: की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।
1: इंजीनियरिंग में पाकु करियर बनाऊ छे तो डिप्लोमा बीई के डी टू डी माटे बेस्ट ऑप्शन छे। केजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सावली।
2: केजे आईटी सावली आपे छे 100% जॉब प्लेसमेंट नी गारंटी।
1: विजिट अवर वेबसाइट kjit.org टुडे।
3: गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, शुभ अवसरों में सोना की खरीदी माटे विश्वासपात्र नाम गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर ब्रिज पास, अलकापुरी, वडोदरा।

अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं अपनापन फिल्म से। सुलक्षणा पंडित और किशोर कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
3: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
3: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: श्रोताओं आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल। आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जे ओम प्रकाश को। आइए उन्हीं की फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं, आक्रमण। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जे ओम प्रकाश को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि, उनकी याद का दिन। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशिक हूं बहारों का, इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर हैं, आनंद बख्शी की रचना, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते।

0: है सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
1: सखी सहेली
2: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम
3: चलते रे इश्क में पड़ जाते
2: पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
4: ओ केटिको बर्फ बदन है।
2: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
5: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
2: जी,
5: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
2: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
6: मैं निकला ओ गड्डी लेके
2: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर शोक अदाओं के

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मिया, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: एक आवाज जिसमें है जोश।

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: ब्रेक से पहले आपने सुना था आसपास फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल थे। अब आपको सुनवाते हैं अर्पण फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप गीत सुन रहे थे अर्पण फिल्म से। इसी गीत के साथ कार्यक्रम यादों की महफिल आज यहीं संपन्न होता है। आज हमने आपको सुनवाए फिल्मकार जे ओम प्रकाश की फिल्मों के गीत, क्योंकि आज था उनकी याद का दिन। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस सफर की सबसे खास बात यही है कि गीतों का चयन भले ही हमने किया हो, लेकिन उन्हें पहचानने का खूबसूरत सा खेल आप सभी के साथ गीतों के साथ हम खेलते हैं। फेसबुक पर हम कुछ छोटे छोटे शब्दों और संकेतों यानी इबारत के जरिए आज के गीतों की झलक साझा आपसे करते हैं और फिर आपकी टिप्पणियां इस सफर को और भी दिलचस्प बना देती है। ये है इस सफर की खास बात। कोई बिल्कुल सही गीत पहचान लेता है तो कोई अपने अंदाज से यादों का नया पन्ना खोल देता है। तो आइए आज भी देखते हैं कि हमारे श्रोताओं ने इन संकेतों से किन किन गीतों का अंदाजा लगाया है। पढ़ेंगे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, करेंगे उनसे जुड़ी बातें और सुनाएंगे मधुर सुरीले गीत जो हर सफर को सचमुच सुरीला बना देते हैं। सबसे पहले पढ़ देते हैं आज की इबारत यानी टेक्स्ट। सावन के झूले पड़े भीगी भीगी रातों में भी पिया अनजान है सपनों की सूखी फुलवारी, तन में पिया दिन भर मुझे यूं सताए, दो नयन ख्वाबों की महफिल सजाए, दर्पण में देखूं जिसे वो सपने सच्चे लगने लगे, शाम सवेरे दिल में तू रहता है, तुझसा दिल का हंसी पहले देखा कहां, दिल ने कहा नहीं माना और एतबार कर लिया, यानी कहा ना माना और दिल ने एतबार कर लिया, बेखुदी में आ गए पास हम और अब ना होंगे जुदा। तो ये थी हमारी आज की इबारत। इनसे जुड़े कई कमेंट्स हमें आ गए हैं। एक श्रोता कहते हैं कि सावन के झूले पड़ चुके हैं लेकिन प्रेमी पिया अनजान है और दिल के सपनों की सूखी फुलवारी ने उम्मीद और अरमान को निराशा से भर दिया है, फिर भी दो नैनों ने जो ख्वाबों की महफिल सजाई है उसमें प्यार की रोशनी धीरे से जगमगाई है जिससे दिल को एतबार हो गया कि अब वो फिर से जुदा नहीं होंगे। सूखी फुलबारी यानी निराशा के बावजूद नए सपने सजाना, यानी कि मन में आशा रखना, मन की अदम्य प्रेम भावना को दर्शाता है। वहीं अनजानेपन के बाद भी दिल का एतबार करना प्रेम की सहज और पवित्र प्रकृति को उजागर करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सावन की बारिश का एक अजीब सा स्वभाव है, यह हमेशा बाहर नहीं बरसती, अक्सर भीतर भी भिगाती रहती है। झूले डलते तो हैं पेड़ों पर लेकिन झूलता मन है, दर्पण में चेहरा अपना दिखाई देता है मगर आंखें किसी और की परछाई ओढ़ लेती है, ख्वाब भी बड़ी खामोशी से आकर दिल के आंगन में बैठ जाते हैं और एक अनकहा नाम पूरे दिन सांसों में गूंजता रहता है। फिर एक दिन दिल बिना किसी दलील के यकीन कर लेता है कि मोहब्बत का रास्ता मंजिल से नहीं इंतजार से होकर गुजरता है। सावन हर साल लौट आता है यह याद दिलाने के लिए कि कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, उन्हें छूने से ज्यादा महसूस किया जाता है। कितनी सुंदर बात आपने कही है। एक और श्रोता कहते हैं कि ये सावन जो है ऋतु नहीं, हृदय की वह अवस्था है जहां हर बूंद किसी अनकहे नाम का उच्चारण करती है, झूलों की रुंझुन भीगी रातों की नमी दर्पण में उभरती छवि और आंखों में सजती ख्वाबों की महफिल सब मिलकर उस प्रेम की कहानी कहते हैं जो

पहले एहसास बनकर उतरता है, फिर विश्वास बनकर दिल में ठहर जाता है। यहाँ विरह भी मधुर है, प्रतीक्षा भी सुंदर, क्योंकि प्रेम का सबसे उजला रूप उसी धैर्य में जन्म लेता है जहाँ मिलन से पहले स्मृतियाँ साथ निभाती हैं। अंततः यह इबारत बताती है कि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं, भीतर धीरे धीरे बरसते सावन से पहचाना जाता है। एक ऐसा सावन जो जीवन को भीगने के साथ साथ महकाता भी है, यानी कि महकना सिखा देता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो श्रोताओं, सबसे पहला गीत आ रहा है सफर का, आपके लिए जुर्माना फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत बद किया है आर डी बर्मन ने।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।

0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
1: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया। उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा।
2: वो कॉमिक क्रिएटर हैं।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
2: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
2: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
2: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: गीत के साथ हमने आपको संदेश भी सुना दिए हैं। श्रोताओं, आज हमारी जो इबारत यानी टेक्स्ट जो था वो बड़ी ही सरलता के साथ आपके सामने आज हमने रख दिया था। इसमें गाने पहचानना शायद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा होगा, है ना? सावन की झूले पड़े ये गीत अभी आपने सुना। सचमुच सावन का नाम आते ही मन जैसे अपने आप गुनगुनाने लगता है। झूलों की पिंगे हो, सखियों की हंसी ठिठोली हो, या फिर अपने प्रिय के आने की मीठी सी प्रतीक्षा, सावन हर एक एहसास को और भी गहरा बना देता है। इसलिए इस मौसम में प्रेम का भी तो महत्व अधिक बढ़ जाता है ना। प्रेम का रूप इस मौसम में और भी हरा हो जाता है, यानी खिल जाता है, हरियाली छा जाती है। तो प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, मुस्कानों में, आंखों की चमक में और गीतों की मिठास में भी महसूस होने लगता है। सावन दिलों को एक दूसरे के और भी करीब ले आता है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सावन के झूले और भीगी भीगी रातों की बातें आज के सुरीले सफर से भाव विभोर करने वाली है। लेकिन बादल हैं कि बरसना ही नहीं चाहते। सुना है पुराने समय से मेघ मल्हार गाते थे और बादल बरस जाते थे। उम्मीद है कि आज की गीतावली यानी सुरीला सफर की गीतावली से ही आज सावन की फुहार बरसेगी। क्यों ना उन्हीं फुहारों का मजा लिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना होगा। और हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि आज सुरीला सफर का सफर झूले में बैठकर सुनने का दिल कर रहा है, लेकिन हमारे फ्लैट में झूला नहीं है और हमारे शहर जामनगर में बारिश भी नहीं हो रही। ओहो, तो रात भीगी भीगी कहां से नसीब होगी। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, लेकिन आज दोपहर में विविध भारती पर सुरीले और सदाबहार गीतों की बारिश होगी तो तय है कि सुरीले सफर में भीगने का बेसब्री से इन्हें इंतजार है। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। गीतों को सुनते हुए ही सावन का आनंद आप उठा रहे हैं। ऐसे ही हमारी अगली श्रोता कहती है कि सावन आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फिर मन इस हरियाली से कैसे अछूता रह पाता। यह महीना ढेर सारी यादें लेकर आता है, झूले, चूड़ियां और मेहंदी के रंग में रंगा। यह मौसम तब और भी खिल उठता है जब प्रियतम आने को हो, गीतों की फुहार के साथ कुछ पिंगे झूले की उड़ा ले आती है। श्रोताओं, आप बताइए कि क्या आपके गांव, मोहल्ले या आंगन में भी कभी सावन के झूले पड़ते थे, या कि अब शहरों में भी आप ऐसा किया करते हैं? क्या आपको भी याद है कि वो दिन जब बारिश की पहली फुहार पड़ते ही मन यूं ही बाहर निकल जाने को मचल उठता था, या फिर कोई ऐसा गीत जिसे सुनते ही आपको अपना बचपन, अपनी सहेलियां, अपने कोई लोग, कोई बहुत खास पल याद आ जाता हो? तो ये सब हमें आप संदेश के माध्यम से बताइए। तो आइए सावन के महीने में आज के कार्यक्रम में अपने मन को टटोलते हुए खोलिए उन यादों का पिटारा। बता दीजिए कि आज का कौन सा गीत आपकी प्यारी याद को ताजा करता है। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सावन का मौसम बड़ा अनोखा होता है, बाहर पेड़ों पर झूले पड़ते हैं तो मन भी यादों और ख्वाबों के झूलों पर झूलने लगता है। कभी कोई अपना याद आता है, कभी दर्पण में कोई सपना मुस्कुरा देता है, दिल बार बार उसी का नाम लेता है जिससे शायद अभी तक कुछ कहा भी नहीं गया। यही तो पुराने फिल्मी गीतों की खूबसूरती है, वे हमारे मन की उन अनकही भावनाओं को भी सुर दे देते हैं जिन्हें हम अक्सर शब्दों में नहीं कह पाते। क्या बात है।

हमारे कुछ श्रोता ये भी कह रहे हैं कि रिमझिम की फुहार बरस रही है और रिमझिम के बीच में अपनी कविता आपसे साझा करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप कविता पढ़ेंगे। अच्छा, तो कविता तो बहुत बड़ी है, हम शायद इसे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम इसे देख जरूर रहे हैं।

विविध भारती का सुरीला सफर है, कैसा सफर, हर कोई जाना है, हर कोई माना है, होती रहती है बातें, प्यार मोहब्बत भरी, मौसम पहाड़ों नदियों से भरी, बातें जब होती लगती हैं खूब सुंदर न्यारी, होती है बड़ी सुहानी, सुरीली सुनकर दिल को होती है तसल्ली, ये श्रोता कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि गांव हमारा बहुत सूखा पड़ा था, फिर कुछ ही दिनों में बरसात की फुहार आई और फिर जमकर बरसा सावन, फिर हम मन हमारा खुशी से झूम उठा और बोल पड़ा आया सावन झूम के, फिर सावन के झूले पड़े और झूले देखकर होंठ गुनगुनाने लगे कि सावन के झूलों ने मुझको पुकारा, मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। क्या बात है? लेते हैं अब अगला गीत, भोला भाला, इस फिल्म से लता मंगेशकर ने और किशोर कुमार ने इस गीत को गाया है। आनंद बख्शी के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत, सुनिए ये गीत।

हमारी एक श्रोता कहती हैं कि मुझे लगता है कि आज की इबारत का मुख्य रंग सावन, प्यार, ख्वाब, दिल और मिलन है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और एक श्रोता कहते हैं कि इस वक्त हम बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप में हैं। और ठीक है, आप ये हमें बता रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि बारिश में भीगना हमारे लिए कष्टकारी होता है, इसलिए हम तो वर्षा का आनंद घर के अंदर बैठकर ही लेते हैं, विशेषकर अपने टेरेस के झूले पर गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों के साथ। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि हमें तो कॉलेज का समय याद आता है, हम सब दोस्त कैंटीन में गर्म गर्म समोसे पैटीज खाया करते थे। एक और श्रोता कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो पापा यही सब सॉन्ग सुनते थे तो मुझे बहुत गुस्सा उठता था, लेकिन आज बड़ा होने के बाद यही सब सॉन्ग मुझे दिल को सुकून दे रहे हैं। क्या बात कही है आपने। पुराने गीत इतने सुकून भरे होते हैं, सुनना जरूर चाहिए आज की जनरेशन को भी। देखिए, हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि बचपन में हमारे गांव से थोड़ी दूर हरा भरा वन था और वहां शिवजी का मंदिर था, वहां सावन की अमावस को मेला लगता था, वहां वड़ का बहुत ही विशाल वृक्ष था, वड़ की लंबी डाली लटकी हुई रहती थी, उसी डाली को लटक कर हम झूला झूलते थे और बहुत ही

आनंद आता था, बिल्कुल आता रहा होगा। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन की पहली बारिश में जवान होते थे तब भीगने का मजा और ही था, लेकिन अब इस उम्र में अंगूर खट्टे हैं, सिर्फ याद ही काफी है। हमारे एक श्रोता और कहते हैं कि सावन की फुहार और प्रेम का संबंध प्रकृति और मनुष्य के बीच का सबसे कोमल समझौता है। बारिश धरती को सींचती है और प्रेम दिल को, दोनों ही बिना मांगे आते हैं और जब चले जाते हैं तो कुछ गीला कुछ यादगार छोड़ जाते हैं। सावन अगर बारिश हो तो भीगने से मत डरना, और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना है ना, लेकिन अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि अगर उम्र ज्यादा है तो और छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा हमें देखभाल करनी ही होती है, थोड़ा बच के ही भीगना होगा, है ना। श्रोता ने ये कहा था कि और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना, क्योंकि सावन का असली जादू यही है कि वह सब कुछ गीला कर देता है और गीले दिल सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। एक और श्रोता कहती है कि धड़कनों में बस गया है सांवरा, रूह में तन्हाई की राहें सजाया है, हर लम्हा उसकी यादों का पहला, दिल ने ख्वाबों में उसे अपना बनाया है, अब तो शाम सवेरे बस एक ही दुआ, प्यार के सफर में भी वो ही मिले। एक और श्रोता कहते हैं कि बाहर चल रही सावन की बरसात, साथ में विविध भारती का संग, हाथ में गरम कॉफी का कप, सामने प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े, क्या बात है। आप तो असल मजा ले रहे हैं इन गीतों को सुनते हुए सुरीले सफर का, क्या बात है। एक और श्रोता कहती है कि हमें तो सावन इसलिए अच्छा लगता है, एक तो चारों तरफ हरियाली और फूल बहुत ही प्यारे खिल जाते हैं, छोटे छोटे सब रंग के फूल और पक्षी भी इतने खुश नजर आते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन का पावन महीना, विविध भारती, मुंबई की मेरी दीवानगी और आज सुरीला सफर प्रोग्राम, और मैं हूं कश्मीर में, क्या बात है, वहीं से आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए बिल्कुल, और वहां पर है सुहाना मौसम, ऐसा भी वो बता रहे हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूं, मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूं, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूं। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत चश्मे बद्दूर फिल्म से, येसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज में, इंदु जैन का लिखा गीत, राजकमल का संगीत।

हमारे एक श्रोता ने कहा कि बहुत सालों बाद भोला भाला फिल्म का गाना सुना, क्या बात है, यह VBS पर ही संभव है। शुक्रिया। अब सुनिए ये गाना।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि पूजा जी, हमारे भोपाल में तो केवल बादल छाए हुए हैं, पानी तो सावन के महीने में भी तरसा रहा है, अब तो केवल विविध भारती का ही सहारा है। एक श्रोता कहते हैं कि वह क्या बात है, लता दीदी की सुरीली आवाज में मेरी पसंद का एक सदाबहार बेमिसाल गीत यहां बज गया है। उस समय हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब कार्यक्रम में अधिकतर गीत हमारी पसंद के आ जाते हैं। जी धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन आते ही मन मयूर नाचने लगता है, फूलों पर पानी की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे शबनम की बूंदें गिर रही हैं। ऐसे माहौल में काम करने में भी दिल नहीं लगता, दिल करता है बस ऐसे मौसम को देखते ही रहें। एक और श्रोता कहती हैं कि मौसम की पहली बारिश अपने साथ पुरानी स्मृतियों की एक पूरी किताब खोल देती है। वह चेहरा, वह बातें और उनके साथ बिताए हुए पल जो वक्त की धूल के नीचे छिप गए थे, अचानक धुले धुले से साफ नजर आने लगते हैं। बूंदों की छुअन उस स्पर्श की याद दिलाती है जो कभी रूह को छू गया था। यह याद कितनी गहरी होती है कि इंसान चाहकर भी इससे मुंह नहीं मोड़ पाता। यह महज एक इत्तेफाक नहीं है, सदियों से सावन को प्रेम, विरह और मिलन का महीना माना गया है। हम चाहे अपनी मसरूफियतों में कितनी भी आगे निकल चुके हों, दिल के किसी कोने में आज भी वह मोहब्बत और उसकी कसक उतनी ही महफूज है। श्रोता कहती हैं कि सावन की ठंडी बौछारें जब जिस्म को छूती है तो रूह में सुलगती हुई किसी की यादें ताजा हो जाती हैं। बरसात का यह हसीन मौसम जहां एक तरफ प्यार की बेताबी बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ महबूब की दूरी सीने में एक मीठा मगर गहरा दर्द जगा देती है। एक और श्रोता कहते हैं कि बहुत सुंदर गीत स्वामी फिल्म से, क्या बात है, आपको अच्छा लगा, ये बहुत ही बढ़िया है। एक कोई श्रोता कहते हैं कि सावन के महीने में ऐसा लगता है जैसे कहीं मोर नाच रहे हो, पंछी चहचहा रहे हो। ऐसे मौसम में दिल करता है कि कागज और कलम उठाएं और कोई कविता लिखें। ठंडी ठंडी हवाओं में कलम रुकती ही नहीं है, क्या बात। एक और श्रोता कहते हैं कि 50 बरस पहले की बात होगी, गांव में झूले पर झूलते सब मस्ती में कजरी गा रहे थे कि झूला टूटा और दूसरी ओर बैठे दो लोग कीचड़ में गिरे जो पहचान भी नहीं आ रहे थे, और इस ओर के 3 लोग नीचे इधर गिरे और चोटिल हो गए। सावन का मजा किरकिरा हो गया। लीजिए अब आपको सुनवा देते हैं अगला गीत, समाधि फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजदूर सुल्तानपुरी के बोल आर डी बर्मन का संगीत।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म अंजाना का यह रिमझिम के गीत सावन गीत में सावन की रिमझिम और दिल की तड़प एक साथ बोलती है, राजेंद्र कुमार की सादगी और बबीता की मासूम अदा इसे और भी खूबसूरत बना देती है। जी हाँ, प्यार जब बरसात में भीगता है तो हर बूंद एक गीत बन जाती है, वही बूंद रिमझिम के गीत सावन गाय का जादू बिखेर देती है। बिल्कुल सही। एक और श्रोता कहते हैं कि इस बरसात के मौसम में तो चाय और पकौड़े का स्वाद बढ़ जाता है और आपके प्रोग्राम सुरीला सफर का स्वाद भी और बढ़ जाता है। दिल करता है कि गीत आते ही रहें और सावन की झड़ी लगी हुई रहे। एक और श्रोता कहते हैं कि पुरानी फिल्मों में सावन पर बने गाने बहुत ही सुमधुर होते थे। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। सावन के गीतों में सबसे पसंदीदा गाना उनका आया आया सावन झूम के। एक श्रोता कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि मैं और मेरा भाई स्कूल से लौट रहे थे और बहुत जोर की बरसात आ गई। वह पूरी सड़कों में पानी पानी भर गया और हमें घर आने में बड़ी दिक्कत हुई। हाँ, बरसात के मौसम में ये दिक्कतें तो हमें देखना ही होती। एक श्रोता कहते हैं कि हमारे नागपुर में पिछले हफ्ते बहुत बारिश हुई लेकिन अब रुक गई है तो फिर से गर्मी बढ़ गई है। एक श्रोता कहते हैं कभी कभी मैं सोचता हूं अगर मैं कोमा में चला जाऊं और कुछ भी सुनाई ना पड़े तो मुझे लगता है यही वो गाना है माँ सरस्वती का होगा जो मुझे होश मिला सकता है। अरे अरे, ऐसे तो नहीं कहिए। एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म जुर्माना का यह गीत सावन के झूले पड़े तुम चले आओ आनंद बख्शी द्वारा रचित, और जी हाँ, ये तो हमने आपको बता दिया है, एक अमर गीत है जो राग पहाड़ी पर आधारित है और यह गीत सावन के मौसम में प्रेयसी के अकेलेपन और अपने प्रेमी के प्रति अघात प्रेम व पुकार को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। क्या बात है, वाह क्या बात है। लता दीदी की सुरीली आवाज में मेरी पसंद का सदाबहार बेहतरीन गीत शानदार है। बहुत धन्यवाद इस गीत को सुनवाने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद संदेश के लिए। तुम चले आओ, तुम जो चले गए हो तो होगी बड़ी खराबी, यादों की महफिल कार्यक्रम में इस मजेदार गीत के लिए आप सभी का धन्यवाद। विविध भारती को ये धन्यवाद दे रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं ये मौसम आया है इतने सालों में, आजा के खो जाएं ख्वाबों ख्यालों में, फिल्म का जय ओम प्रकाश जी के सुपरहिट गाने आज उन्होंने सुने यादों की महफिल में और उन्हें बड़ा आनंद आया। एक और श्रोता कहते हैं कि पिया का नाम आते ही सांसों में एक सरगम सी बजने लगती है, बेचैन

अपनी और सुकून का मिला जुला रूप इस पल को जादुई बनाता है। पल के बिछाए रास्ते को देखना और हर आहट पर यह सोचना कि प्रिय आ गया है, इस रुत की सबसे हसीन सच्चाई है। जब सावन की यह रुत आती है तो प्रकृति भी श्रृंगार करती है। ठंडी हवाएं, खिले हुए फूल और फिजा का नशा प्रेमियों के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। लंबे इंतजार के बाद प्रेमी से मिलने की घड़ी जब पास आती है तो मन का कोना कोना खुशी से झूम उठता है। क्या बात है, इसी बात पे आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। आरोप फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में माया गोविंद का लिखा गीत है, भूपेन हजारिका का संगीत बजाया।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की जो बात समझी है इन्होंने कि चल रहे ऋतुचक्र के अनुरूप सावन की ही बातें हैं और इस दृष्टिकोण से आज की इबारत सराहनीय है ऐसा वो कह रहे हैं। साथ ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि बहुत दिनों के एक नई उम्मीद है सावन के दिल की बात घर से दूर प्यार की मंजिल ये मोहब्बत की आवाज हर गीत मोती की माला सभी सॉन्ग कुछ यादें ताजा हो गई है उनकी ऐसा वो बता रहे हैं।

हमारी एक श्रोता कह रही है कि आज की सुंदर सी इबारत, सावन की रूमानी फुहारों, झूलों की मस्ती, किसी अपने की याद, आंखों में बसे सपनों और प्रेम के अटूट विश्वास का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती हैं। इसमें प्रकृति और प्रेम का ऐसा संगम है जो हर दिल को भीगा भीगा सा एहसास देते हैं। और उन्होंने ये गीत लिखा है, अब आपको सुनवा देते हैं।

श्रोताओं, समय की कमी रहते हुए कार्यक्रम अब समाप्त होने की ओर है, तो ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं गीतों के साथ आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। लेती हूं आपसे विदा। जी नमस्कार।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 40वीं कड़ी।

0: इस आंदोलन की अधिकतर सभाओं का आरंभ या समापन वंदे मातरम से होने लगा। पढ़े लिखे लोग जब भी आपस में मिलते तो नमस्कार की जगह वंदे मातरम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते। वंदे मातरम इस गीत की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उसका दुष्प्रचार भी हुआ। वंदे मातरम की तुलना अन्य भाषाओं की कविता से करके उसमें कमियां दिखाने के प्रयास तत्कालीन कुछ लेखकों और संपादकों ने किए।
1: ১৯০৭ में लंदन के टाइम्स समाचार पत्र में हैदराबाद के दक्खन पोस्ट के संपादक सिद्ध मोहन मित्र ने वंदे मातरम के बारे में ऐसा ही भ्रमित करने वाला लेख लिखा था। फ्रांस के राष्ट्रीय गीत ला मार्सलेज का वंदे मातरम बंगाली संस्करण है और इसमें कुछ उत्तेजक शब्द जोड़कर लोगों को प्रेरित करने का कवि का प्रयास है, ऐसा उस लेख में लिखा गया था। इस लेख का भारत में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य समीक्षकों ने भी खंडन किया। पायोनियर के अंक में लिखा था, कविता की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से वंदे मातरम गीत अधिक अच्छा है। ला मार्सलेज में कवि का हृदय दिखाई नहीं देता, परंतु वंदे मातरम में कवि ने अपनी आत्मा समर्पित की है। फ्रांस और हिंदुस्तान के इन राष्ट्रीय गीतों में बहुत बड़ा अंतर है। वंदे मातरम एक प्रार्थना है। इसमें स्वदेश के आधार पर आद्य शक्ति को मां कहकर संबोधित किया गया है। मातृभूमि को केवल मां कहकर कवि रुका नहीं है, बल्कि मां के समान ही प्रेम और श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाया है। जो गीत देशवासियों को अपनी जन्मभूमि से मां के समान प्रेम करना सिखाता है, उस गीत की तुलना ला मार्सलेज गीत से कैसे हो सकती है।
0: वंदे मातरम शब्द अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंच गए। वंदे मातरम शब्द का उच्चारण करते हुए फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बाद अनेक क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते हुए शहादत स्वीकार करने लगे। लंदन में ही वीर सावरकर, सेनापति बापट, निरंजन पाल, मदन लाल ढींगरा जैसे युवा क्रांतिकारियों के गुरुतुल्य श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा और मादाम कामा के साथ थे। अंग्रेजों की राजधानी लंदन में कर्जन वाइली नामक अंग्रेज अधिकारी पर गोलियां चलाने वाले मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा सुनाई गई। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को पेंटन विले जेल में फांसी दी गई, पर उससे पहले उनका लिखा हुआ पत्र अंग्रेजों ने छुपा दिया था। सावरकर और ज्ञानचंद वर्मा ने भाग दौड़ करके फांसी से एक दिन पहले डेली न्यूज समाचार पत्र में मदन लाल ढींगरा का चैलेंज नामक पत्र छपवाया और लंदन में सामान्य जनता से लेकर पुलिस तक सभी को धक्का लगा। इस पत्र की भाषा अत्यंत ओजस्वी तो थी ही, पर इस पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था। इन शब्दों के कारण केवल दो दिनों में इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक कई बड़े समाचार पत्रों ने इस पत्र को प्रसिद्धि दी, जिसके कारण भारतीय क्रांतिकारियों का आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों का दमन और वंदे मातरम शब्द दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। मदन लाल ढींगरा लिखते हैं,
1: आत्म बलिदान कैसे करना चाहिए, यही एकमात्र शिक्षा इस समय हिंदुस्तान में देने योग्य है। यह शिक्षा देने का एक ही मार्ग है, स्वयं का बलिदान करना। इस भावना से प्रेरित होकर मैं प्राणार्पण कर रहा हूं और मुझे अपने बलिदान पर गर्व है। इस भारत माता की संतान के रूप में मेरा पुनर्जन्म हो और इसी पवित्र कार्य में मेरा शरीर, मेरा जीवन मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो जाए, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। भारतीय स्वाधीनता का पक्ष विजयी हो, मानव जाति के कल्याण और ईश्वर के वैभव का समर्थन करने वाला स्वतंत्र भारतवर्ष संसार में आत्म तेज से चमकने लगे, तब तक मेरे जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे ही चलता रहे, ऐसी मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है।

0: 1914 के आसपास प्रथम विश्व युद्ध की हवाएं चलने लगी। उन दिनों कोमागाता मारू जहाज का किस्सा विशेष रूप से चर्चित रहा। इस जहाज के ध्वज पर वंदे मातरम, सत श्री अकाल और अल्लाह अकबर शब्द अंकित थे। बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में 360 भारतीय यात्रियों को लेकर कोमागाता मारू नामक जापानी जहाज 4 अप्रैल 1914 को हांगकांग से रवाना हुआ। 23 मई को ये जहाज जापान होते हुए कनाडा पहुंचा। ब्रिटिश सरकार के इशारों पर नाचने वाली कनाडा सरकार ने इस जहाज को बंदरगाह पर लगाने की अनुमति नहीं दी। 15 दिनों तक समुद्र में खड़े इस जहाज पर अन्न जल समाप्त हो गया। युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। आगे वहां से निकला जहाज 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा और वहां हुई मुठभेड़ में 18 यात्री शहीद हो गए। इस पूरे प्रकरण के मुख्य नेता बाबा गुरुदत्त सिंह को वंदे मातरम शब्द अत्यंत प्रिय थे, इसीलिए इस जहाज के ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द थे।
1: विदेशों में बसे भारतीयों में वंदे मातरम शब्द के प्रति अत्यंत आदर भाव उत्पन्न हो गया था। वंदे मातरम के प्रति उनका प्रेम कई प्रसंगों से व्यक्त होता था। इसी दौरान वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने आयरलैंड में वंदे मातरम मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। अफ्रीका में 22 अक्टूबर 1912 को गोपाल कृष्ण गोखले केपटाउन और फिर जोहान्सबर्ग गए थे। हर जगह उनका वंदे मातरम के नारों से स्वागत हुआ।
0: दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। उस समय इस षड्यंत्र के सूत्रधार लाला हरदयाल बर्कले में थे। ये समाचार सुनने पर लाला हरदयाल सहित भारतीय छात्रों ने एक सभा की, जिसमें वंदे मातरम गीत गाया गया। एक साल बाद इस घटना की वर्षगांठ पर 23 दिसंबर 1913 को लाला हरदयाल ने भारतीयों के लिए एक पर्चा बांटा, जिसका नाम था शाबाश। इस पर्चे में लिखा था, गुलामों, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करोगे? हम कहते हैं बम की सहायता से। बम विद्रोह का संदेश वाहक है। शस्त्र की पूजा करो, शस्त्रों का अभिवादन करो। उस पर्चे के पहले भाग में बम बनाने की प्रक्रिया, दूसरे में उसकी उपयोगिता और तीसरे में बम की प्रार्थना दी गई थी। पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था।
1: केवल कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका में ही नहीं, बल्कि जहां भारतीय नागरिक मुस्लिम देशों में थे, वहां भी वंदे मातरम पहुंच गया। विश्व यात्री रामनाथ विश्वास ने उस समय घटी घटनाओं को लिखा है। तुर्किस्तान में अदम नामक स्थान की मस्जिद पर तुर्की भाषा में वंदे मातरम शब्द लिखे थे, साथ ही हिंदुस्तान का झंडा भी था। शुक्रवार को सफाई के बाद नमाज के समय वंदे मातरम का उच्चारण होता था। वियना में अमेरिकन एसोसिएशन में रामनाथ के भाषण के बाद हिंदी लोगों ने वंदे मातरम का जय जयकार किया। बगदाद, तेहरान, इराक में हिंदी लोगों का वंदे मातरम के प्रति प्रेम उन्होंने अनुभव किया। भारत के बाहर वंदे मातरम पहुंच तो गया ही था, परंतु भारत में बंगाल विभाजन को लेकर जनमानस में भड़की आग अभी भी जल ही रही थी।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 40वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
1: वंदे
0: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
3: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
5: और आ गया।
4: एक और आ गया।
6: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
7: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
8: सुनिए
9: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: 2:15 का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है।

0: राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में

0: अभी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
2: वेलकम के साथ जो है और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
3: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।

0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं, जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
1: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया, बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया। आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परम्पराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग की महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
4: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद

0: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवाज से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा की आवाज से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
1: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जरा।
1: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम
3: चलते रे इश्क भी बढ़ जाते
2: पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
4: ओ केटिको बर्फ बदन है।
2: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन याद

0: यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
1: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
2: जी,
1: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
3: निकला गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, भीगी रात फिल्म का गीत है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल है, रोशन का संगीत।

अपना देश इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। आनंद बख्शी की रचना है, आजी बर्मन की बनाई धुन पर।

0: आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून।

0: सुना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत दो बदन फिल्म से, आशा भोसले की आवाज है, शकील बदायूनी की रचना, रवि का संगीत।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया। उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
3: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
4: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
3: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
4: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
3: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सावन की घटा फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में, SH बिहारी के बोल OP नैयर का संगीत।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम इसके संपादित अंश।
1: वंदे
0: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो

0: संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
1: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
2: सदाबहार नगमे की ये आखिरी प्रस्तुति है लता मंगेशकर की आवाज में। ये गीत है आया सावन झूम के, इस फिल्म से आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हेलो सहेली कार्यक्रम का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक कॉन्स एवं हवन सामग्री।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सभी सखियों को मंत्री वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सावन मनभावन मौसम जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन झूम के गाता इटलाता सबको अपने रंगों में रंग देता है, अपने साथ लाता है उमंग उत्साह से भरे पर्व तीज त्योहार, हरियाली तीज कजरी तीज और प्रेम का बंधन रक्षाबंधन जिसमें बसी होती है भाई बहन के प्यार की सुगंध। सावन में झूला झूलना कजरी गीतों के मीठी तान, सावन में लगते हैं मेले जहां जाते नहीं हम अकेले, संग होती हैं सखियां सहेलियां यादों वादों और मायके जाने का मौसम जहां से जुड़ी बचपन की हर याद ताजा हो जाती है, बहनों के सजने सवरने श्रृंगार करने का मौसम। आप इस मौसम में क्या खास तैयारी करती हैं और क्या करती हैं मेलों से खरीदारी? हेलो सहेली में अपनी यादों को साझा कीजिए हमारे साथ। फोन की घंटी बज उठी और देखते हैं कौन सी सखी होंगी जो करेंगी हमसे आज अपने मन की बात। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं?
1: मैं बियामा मुन्ना बात कर रही हूं मैडम
0: जी।
1: बेलगाम जिला गोकाक तालुक
0: जी,
1: गांव कुंदरगी से
0: जी।
1: और मैं कर्नाटका से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अरे वाह, आप कर्नाटका से बात कर रही हैं। वहाँ की तो बहुत खास बात है, वहाँ पर बहुत घूमने वाली जगह है, बहुत अच्छी सी जगह है ना वहाँ पर?
1: बहुत अच्छी है मैडम, हरियाली वगैरह बहुत है यहाँ, आप आएंगी तो बहुत मजा आएगा।
0: आपको क्या क्या अच्छा लगता है वहाँ पर कर्नाटक की खास चीजों को घूमना देखना?
1: यहाँ गार्डन वगैरह है ना मैडम, वो हिड़कल बोल के गांव है
0: जी,
1: और बेलगाम भी हमारा बहुत अच्छा है, वहाँ हम घूमने जाते हैं साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा
0: जी। दिया जी, देखिए ना सावन का जो मौसम चल रहा है, सावन आ गया है, झूम कर इठलाता बलखाता, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा।
1: सावन की यादें मैडम बहुत अच्छा है, बरसात है, रिमझिम बारिश है।
0: और सावन में झूला झूलना ये कैसा लगता है आपको?
1: बहुत मजा आता है मैडम, हमारे इधर मेला लगता था ना मैडम साल में एक बार।
0: हाँ जी।
1: तो हम अपने सखियों के साथ झूला झूलते थे।
0: अच्छा,
1: और बहुत मजा आता था
0: जी। अच्छा, मेले में आप जब जाती है ना सावन के जो मेले होते हैं वहाँ पर क्या क्या चीजें खरीदती हैं?
1: वहाँ मैडम मैं और मेरी कानों की बाली और मेरा मेकअप का सामान।
0: अच्छा अच्छा, दिया जी आप बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं रंग फिल्म से सुनना पसंद करूंगी मैडम, तुम्हें देखे मेरी आंखें।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बताइए आपका क्या नाम है?
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ।
0: कहाँ
1: से? प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: बहुत प्यारा सा नाम है पूनम जी आपका। बिल्कुल, आपकी आवाज भी इतनी मीठी है कि लग रहा है कि पूरी चांदनी बिखर गई है हमारे प्रोग्राम में जी।
1: थैंक यू मैडम जी।
0: बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा बोला आपने। तो देखिए, सावन का जो ये प्यारा सा मौसम चल रहा है, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए।
1: जैसे सावन महीना हो गया आ गया, तो मैडम जी अब तो त्योहार व्रत जो है वो सब तैयारियां कर रहे हैं हम लोग, कभी तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही सावन आ जाता है तो एक मन में उमंग और तरंग आ जाता है मैडम जी, एक खुशी सी छा जाती है सभी के दिलो दिमाग में और बहुत ही अच्छा लगता है।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम है मंजिल,
0: जी
1: उसने लता मंगेशकर जी का गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा गीत है मेरे, यदि आप इजाजत दे तो थोड़ा मैं गुनगुना सकती हूँ।
0: बिल्कुल, आप गा के सुनाइए।
1: सावन तुलक तुलक जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, ला ला ला ला ला ला ला लगी।
0: बहुत प्यारा सा आपने गीत गाया, तो चलिए आपको सुनवाते हैं पूनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अंबिका विजय मारवाड़ी बोल रही हूँ। मैं शिरपुर जैन से बोल रही हूँ।
0: अंबिका जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ,
0: अंबिका जी, आपके और क्या क्या शौक हैं?
1: मैं रसोड़ा चलाती दीदी,
0: ये क्या होता है?
1: रसोड़ा चलाती, उसे खाना पकाना, रोटी पकाती,
0: अच्छा
1: दाल सब्जी चावल खाने को 10-20 आदमी आते खाने को,
0: जी,
1: वो चलाती।
0: अच्छा। तो आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मेरा बेटा, मैं, तीन जन है, हम बेटी की शादी हो गई।
0: अच्छा, ये बताइए कि आप कभी मेले घूमने गई हैं?
1: मेले घूमने में जाती ना, वो नांदेड़ जाती, चंदा
0: अंबिका जी, ये बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मामा से प्यारा वो करते हुए पिक्चर में।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, हम इंदौर से बोल रहे हैं, शीतल भाटी।
0: शीतल जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शीतल जी,

0: आपने कभी सावन के मेलों को जा करके देखा है?
1: जी जी बिल्कुल देखा है, पर अभी नहीं। जैसे हम छोटे छोटे थे, हमारे मम्मी वगैरह हमको मेले में ले जाया करती थी, सावन के यहाँ पर झूले डलते थे, सावन के जो आज भी डलते हैं, पर अभी काफी टाइम से हमने देखा नहीं है। और जो पहले डलते थे उस प्रकार के अब नहीं डलते।
0: तो आप झूलती थी झूला?
1: जी जी मैं बहुत छोटी थी।
0: अच्छा, तो ये बताइए, और आप क्या करती हैं, क्या शौक हैं आपके?
1: जी मैं तो अभी फादर का बिजनेस है, वो संभालते हैं।
0: जी, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटा रहे हैं, और बचपन की यादें भी आपने थोड़ी सी बताई हैं। तो
1: जी
0: बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज हमारी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहेंगे हम, आया सावन झूम के।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो, मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ, प्रगति मुड़े।
0: प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ।
0: गृहिणी हैं? तो गृहिणी हैं तो इसमें बहुत सारे काम भी होते हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं गृहिणी होने में। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कि सबसे पहले हम कौन सा घर में काम कर लें?
1: काम हम तो सभी रोज करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, वो तो करते ही है।
0: जी अच्छा, ये बताइए प्रगति जी, जैसे सावन का जो महीना चल रहा है, तो आपको किस रंग की साड़ियां पहनना पसंद है, खासकर सावन के मौसम में?
1: सावन के मौसम में हरी।
0: हरी? वाह क्या बात है, यानी कि हरी साड़ी, हरी हरी मेहंदी हाथों में लगाती होंगी, हरी चूड़ियां, है ना, बालों में गजरा।
1: हाँ,
0: किस तरह के फूलों का गजरा आपको अच्छा लगता है बालों में लगाना?
1: मोगरा।
0: क्या बात है, मोगरे की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है ना।
1: हाँ,
0: और आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं?
1: गुलाब, मोगरा, जाई।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है सखी सहेली जो है आज मोगरे के फूलों से महक गया है ना प्रगति जी?
1: हाँ,
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: हम आपके हिकोन में से हम आपके

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: शांति भाई बोल रही हूँ भोपाल से। सहेली
0: शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। ये बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं, उसके कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: सब प्रॉब्लम अच्छा लगता है, जो भी आता है ना वो सब अच्छा लगता है।
0: अच्छा शांति जी, हम बात करने वाले हैं सावन के बारे में। ये बताइए
1: हाँ
0: कि बचपन में आपने कभी झूला झूला?
1: हाँ झूला ना,
0: जी
1: बहुत झूला झूला बचपन में, तो इतना झूला झूला के वो ही बता ही नहीं सकते
0: आपने अपनी सखियों के साथ जब झूला झूला, तो उसकी कुछ यादें हो तो बताइए आप मुझे।
1: बहुत अच्छा लगता था, सखियों के साथ रहती थी, हर चीज की नॉलेज होती थी और बहुत साथ में रहती थी, ऐसा लगता था कि जीवन भर साथ में रहे तो अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, सखियों का साथ ऐसा होता ही है कि हम साथ में रहें। अच्छा, मेले में बहुत सारी दिखती ना चीजें, कि हरी हरी चूड़ियां, लाल हरी चूड़ियां दिखती हैं, है ना?
1: दिखती थी ना, जो पसंद आती थी हरी चूड़ी ज्यादा पहनते थे, क्योंकि हरी हरी टाइम रहती है ना,
0: जी
1: तो हरियाली में वो ही अच्छी लगती थी।
0: अच्छा ये बताइए शांति जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: झिल मिल सितारों का आंगन होगा, यही मेरे को गाना सुनना है।
0: शांति जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कॉर्न्स एवं हवन सामग्री।

0: अंतराल के बाद सखियों से बातें करने आ गई है मंजरी वर्मा। कार्यक्रम चल रहा है हेलो सहेली। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सुचिका सुमित तटानी बोल रही हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: सुचिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। नमस्कार, कैसा लग रहा है? आपने आज फोन लगाया है तो आपको कैसा लग रहा है?

0: है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका प्रोग्राम सुनती भी रहती हूँ और बहुत प्यारी प्यारी बातें, मीठी बातें, कुछ यादें, कुछ खट्टी, कुछ मीठी,
0: जी,
1: तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: आप रेडियो बहुत ध्यान से सुनती हैं लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बचपन की आदत है ना, हम लोग 1970s वाले हैं ना,
0: क्या बात
1: तो
0: है, मतलब नाइनटीन सेवेंटीज
1: रेडियो
0: की तो बहुत प्यारी प्यारी सी यादें भी होंगी आपकी।
1: बिल्कुल, रेडियो तो उस टाइम के ऐसा है कि स्कूल सुबह विविध भारती से पूरा सुनना और स्कूल जाना, वापस आना, अलग अलग पिक्चरों का गाना सुनना, रात तक देखना, और वो लाइव क्रिकेट मैच का जो टेलीकास्ट होता था, और
0: जी
1: 26 जनवरी का परेड,
0: जी
1: तो एक बहुत प्यारी, मतलब एक अटैचमेंट तरीके का है रेडियो से।
0: जी तो बहुत अच्छी सी यादें आपने साझा करी। और ये बताइए कि सुचिका जी, हम बात करने वाले हैं आज सावन के बारे में, कि सावन का जो मौसम चल रहा है, तो इसमें आप क्या क्या खास तरह से करती हैं घर में तैयारियां, और जो सावन के जो मेले लगते हैं ना, उनको देखा है
1: हाँ
0: आपने कभी जा करके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुड़िया का मेला तो बचपन में, मतलब ये तो हमारे घर के बाहर ही, हम लखनऊ के बिलोंग करते हैं नरही से,
0: जी
1: तो बहुत बड़ा हमारे घर के बाहर ही गुड़िया का मेला लगता है, और वो अनरसी की गोली तो मतलब बचपन को तरोताजा कर देती है, आज भी बिल्कुल सब कुछ नया नया लगता है, और वो झूले, तेंगे, मिट्टी के खिलौने, सौंधी सौंधी खुशबू, और मेरे बाबा का चीजें लाना,
0: जी
1: क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली में से है,
0: जी
1: तो बहुत मजा आता था, इतने भाई बहन, वो बात ही अलग है, छत पे सोना, बारिश में खेलना,
0: क्या
1: अलग
0: बात
1: ही
0: है।
1: मजा है वो।
0: और सावन में जो झूला झूलते हैं उसकी भी बड़ी याद है, जब पैंग दिया जाता है, पैंग दे देकर झूलते हैं, तो आपने कभी इस
1: बिल्कुल
0: तरह के झूलों को झूला है कि पैंग दी हो आपने भर भर के?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा पार्क होता था, हम लोग जितनी भी सहेलियां होती थी झूला लगाते थे, और बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, उसको फूलों से सजा कर और एक एक करके पेंग लगाते थे इस तरीके से, और भीड़ बाहर होती थी, मम्मी, मेरी माँ लोग, चाची लोग, उन लोग सब हरी हरी चूड़ियां
0: जी
1: और साड़ी तैयार, और सब सावन का सेज, हरा लाल, मतलब एक
0: क्या
1: अलग ही
0: बात
1: छवि उभर के आती है।
0: क्या बात है, आपने इतनी अच्छी सी बातें करी। जो सावन के झूले की बात करी आपने कि फूलों से सजा होता था, तो बिल्कुल राधा और कृष्ण का वो झूला याद आ गया है ना?
1: कुछ कुछ वैसे ही हम लोग करते थे एक्चुअली, सारी
0: जी
1: बदमाश लड़की लड़कियां, सब भाई बहन मिलके, मोहल्लों के बच्चे जो खेलते थे, क्योंकि तब
0: जी
1: तो ये गैजेट्स और ये सब तो होता नहीं था, तो वही आनंद, और कि आज शाम को मिलेंगे तो आज ही, और सावन में जो ब्रेक होता था, हम लोग की छुट्टियां भी होती थी, तो बहुत मजा, और रेनी डे तो शायद आपने भी इंजॉय किया
0: जी
1: होगा,
0: बिल्कुल, हमने भी
1: मतलब
0: इंजॉय किया है रेनी डे का।
1: बिल्कुल, तो बहुत, मतलब आपने ऐसा टॉपिक लिया है कि मैं तो बोलती ही जा सकती हूँ।
0: अच्छा भी लग रहा है कि आप इतनी सारी बातें, इतनी यादें ताजा कर रही हैं। तो जो सावन में बहुत सारे त्योहार होते हैं, हरियाली तीज, कदरी तीज, और बाद में रक्षाबंधन आता है, तो
1: हाँ
0: भाई
1: हाँ
0: बहन से जुड़ा ये प्यारा सा त्योहार होता है, तो आप क्या तैयारी करती हैं? अभी से तैयारी करेंगी या जब रक्षाबंधन आएगा उसके पहले कुछ दिन पहले तैयारी करेंगी? अपने हाथ से राखी बनाएंगी भाई के लिए या
1: बिल्कुल
0: खरीदेंगी?
1: बिल्कुल, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, और हमारे जॉइंट फैमिली में कजन शब्द बोलना मना है, मतलब हमने कभी यूज नहीं किया, तो हम
0: जी
1: लोग टोटल 13 भाई बहने हैं,
0: क्या बात है,
1: और आप सोच नहीं सकते, और मेरी इकलौती बुआ होती थी, वो दिल्ली से आती थी, पूरा पकवान बनता था, मतलब, और हम लोग सब साड़ी पहनते थे, और खाना बनता था, पूरा सजाया जाता था,
0: क्या
1: राखियां
0: बात है
1: हमने रेशम के धागों से, वो गाना नहीं है रेशम
0: जी,
1: के धागों से,
0: हाँ जी
1: तो उसी में प्यार पिरो के भाइयों के लिए हम सारी बहनें बनाते थे राखियां,
0: जी
1: और हमारे जो सबसे बड़े ताऊजी थे वो कंपटीशन करते थे कि किसका बेस्ट राखी होगा, तो
0: क्या
1: उसको
0: बात है
1: प्राइज मिलता था।
0: क्या बात है।
1: हम लोग एक डाइनिंग टेबल के ऊपर मिनी कॉन्सर्ट भी करते थे, आप यकीन नहीं करोगे, डांस होता था, प्रोग्राम होता था, बच्चों, हम लोग सारे जो चिल्लर पार्टी होते थे।
0: क्या बात है, यानी कि बचपन की आपने इतनी सारी यादें ताजा कर दी कि मेरी भी यादें ताजा हो गई हैं। अच्छा सा माहौल बन जाता है जब सब लोग एक साथ होते हैं परिवार में, जब बड़ा
1: बिल्कुल,
0: परिवार होता है तो उसकी रौनक ही अलग होती है।
1: बहुत बहुत मजा
0: जी
1: आता था, क्योंकि हमारे बाबा लोग 7 भाई और 1 बहन, तो आप सोच सकती है क्या धमाल ख्याल होता होगा।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, क्योंकि आजकल तो परिवार सिमटते से जा रहे हैं, छोटे से होते जा रहे हैं। सुचिका जी ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में ससुराल में सास ससुर हैं
0: जी,
1: और देवर देवरानी, इन लोग अभी दिल्ली में, मतलब वो भी गाजियाबाद की तरफ ही रहते हैं। तो बस हम लोग चार पांच जो ना, मेरा बेटा है वो अभी लॉ कर चुका है, अभी अभी हाल ही

0: में कृपा है ठाकुर जी की नौकरी पे लगा है।
1: क्या बात
0: तो
1: है,
0: बस छोटा सा प्यारा सा परिवार है।
1: बहुत अच्छा लगा सुन करके। अच्छा बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
0: मैं सावन के महीने में सजना को याद ना करूं ऐसा तो हो नहीं सकता,
1: नहीं बिल्कुल,
0: और
1: आप याद
0: सावन है
1: कीजिए
0: तो सजना भी है और उनके लिए निखरना भी है।
1: जी।
0: तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको अनुरोध करूंगी, सजना है मुझे साजन के लिए ये वाला गाना आप चला दीजिए।
1: सजना है मुझे सजना के लिए, फिल्म सौदागर का ये गाना। तो
0: हाँ जी,
1: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। आप ऐसे ही अपने सजना के लिए सजती संवरती रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अर्चना गुप्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: अर्चना जी, आपने हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपका फोन लगा?
1: अरे आपको तो मैं जनवरी से ट्राई कर रही हूँ। मैं सोची थी मैं विश करूंगी हैप्पी न्यू ईयर,
0: जी
1: उससे करते करते सावन आ गया, अब तो पलता मिल ही गया।
0: मिल गई ना, तो देखिए सावन चल रहा है ना, तो पहले तो हम लोग एक दूसरे को सावन की ही शुभकामनाएं देते हैं, है ना?
1: आपको भी जी,
0: तो अर्चना जी,
1: आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, सावन की
0: अर्चना
1: जिंदगी हरी भरी रहे आपकी।

0: जी अर्चना जी, ऐसी ही बहुत प्यारी सी शुभकामनाएं आपने मुझे दी और हम भी देना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में हरी भरी खुशियां रंग बिखेरे तरह तरह के, और बहुत सुखमय जीवन हो आपका। बताइए अर्चना जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं हाउस वाइफ हूँ और घर से मैं थोड़ा सा मिक्सचर, नमकीन और गुजिया इसका काम करती हूँ,
0: अच्छा,
1: जो
0: ये
1: बहुत अच्छा चलता है।
0: बहुत
1: अभी फेस्टिव सीजन है ना, तो अभी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ये रक्षाबंधन से शुरू होकर दिवाली तक मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, बाकी समय तो चलता ही है,
0: जी
1: बट अभी त्योहार बहुत ज्यादा रहते हैं ना, तो स्पेशली गुजिया का मेरा बहुत डिमांड रहता है।
0: अच्छा, तो गुजिया आप किस तरह की बनाती हैं, सूजी की या मावे की?
1: नहीं, मावे की,
0: उसमें कुछ भी मिलाती
1: मावे
0: नहीं
1: की
0: है, सूजी भी नहीं मिलाती है ना?
1: नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शक्कर, मावा और ड्राई फ्रूट्स रहता है।
0: क्या बात है। जो आप नमकीन बनाती हैं, उसमें कौन सी खास नमकीन आप बनाती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है और सबसे ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं?
1: चाकोली है, वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट रहता है।
0: जी बहुत।
1: हाँ, तो वो बहुत ज्यादा चलता है, पसंद किया जाता है।
0: ये खाना जो बनाने का शौक है, ये आपको बचपन से था या बाद में आपको हुआ?
1: अरे नहीं, मैं तो किस उम्र से खाना बना रही हूँ मेरे को ये भी नहीं मालूम। मेरी मम्मी बचपन से
0: जी
1: ही काम करवाती थी, तो वो आदत पड़ गया था, और खाना
0: जी
1: खाने का शौक और बनाने का बहुत ज्यादा शौक था, तो
0: क्या
1: वो फिर हमारी हॉबी बन गई।
0: क्या बात है।
1: और
0: यानी
1: फिर
0: देखिए,
1: बड़े हो गए हैं, उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया है, और भगवान की दया है कि बहुत अच्छा चल रहा है।
0: माता पिता का जो भी सिखाया हुआ होता है ना काम, बच्चों को जो बचपन में
1: जी
0: सिखाते हैं, वो अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि शादी
1: हाँ
0: होगी, दूसरे घर जाएंगी, तो वहां पर उनको किसी काम में दिक्कत ना हो। तो देखिए, उनका जो सिखाया हुआ था आपको हुनर, वो आज आपके काम आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।
1: काम आ रहा है ये चीज।
0: तो आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा दी?
1: नहीं, बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं, पर हाँ, अभी जैसे गुजिया का टाइम है, तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि
0: जी
1: उसमें जब तक दो तीन लोग नहीं लगेंगे ना, तो नहीं हो पाता। एक एक दिन में 10 किलो 15 किलो बनाना रहता है।
0: बिल्कुल
1: दो
0: सही बात
1: लेडीज
0: है।
1: भी हैं, हाँ दो लेडीज भी हैं, तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती, मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं।
0: क्या बात है। यानी सावन में आपने गुझियों की याद दिला दी, महक हमारे यहां तक आ गई है उड़ करके। अर्चना जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। और
1: मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग की आवाज इतनी मीठी
0: जी
1: लगती है ना,
0: जी
1: कि मैं क्या बोलूँ, ये
0: जी
1: पूछिए मत।
0: धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए अर्चना जी, सावन की कौन कौन सी यादें हैं जो आप मुझे बताना चाहेंगी?
1: ऐसे तो बहुत सारी हैं, पर हमको अपने शादी के बाद का पहला सावन याद है, जब
0: जी
1: मैं मायके गई थी, अपने हाथ से भाई को राखी बांधी थी।
0: जी
1: 30 साल शादी को हो गए, उसके बाद ये चांस दोबारा नहीं मिला, तो वो यादगार रहा है मेरे लिए।
0: जी आप फिर से वापस अपने मायके जाइए और अपनी यादों को फिर से ताजा कीजिए, तो वो बहुत ही अच्छी सी यादें होती हैं, है ना?
1: वो यादें होती हैं, पर अभी बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को देखना है, तो हो नहीं पाता है।
0: जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं ये चीज। तो सावन में जब मेले लगते हैं, वो मेले आपने जाकर देखे हैं?
1: बहुत देखे हैं, बहुत मजा आता है, उसके लिए तो स्पेशली समय निकालती हूँ कि नहीं मेरे को जाना है। उसमें जाने से ऐसा लगता है मेरा बचपना आ गया वापिस,
0: और वहां पर
1: दूसरा और कुछ नहीं रहता
0: जी
1: था, तो मेला देखना है, कोई भी मेला लगाओ, कहीं भी लगाओ, तो जाना है देखने, मेला देखने जाना है, प्रदर्शनी देखने जाना है, और जो झूले वगैरह रहते थे, झूलने का जो आनंद आता था ना, वो सब चीजें तो अब याद करके ही रह जाते हैं, पर लगता है तो मैं तो जरूर जाती हूँ।
0: अच्छा, मेले में जो दुकानें लगती है, वहां बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं जो घरों में उपयोग की जाती, बच्चों के खिलौने होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, हार माले चूड़ियां सब होती हैं। तो आप उनमें से क्या क्या चीजें ज्यादा खरीदा करती थी उस समय?
1: मैं किचन का सामान ज्यादा देखती थी, ध्यान उसी पे ज्यादा जाता
0: क्या
1: था।
0: बात है। हम समझ सकते हैं कि आपका शौक बचपन से जो किचन में आपने काम किया है,
1: किचन में
0: तो
1: हाँ,
0: जी
1: क्या है क्या नहीं है, अच्छा इस बार ये चीज नया आया है, पकड़ कर, वो जो पहले तो बड़े बड़े हम लोग के यहाँ अदरक वगैरह घिसने वाले
0: जी
1: आते थे,
0: जी
1: अब ये छोटे छोटे मिलने लगे हैं, तो वो सारी चीजें जैसे मेले में दिखती थी ना, तो तुरंत खरीदते थे। और अभी भी किसी भी मेले में जाएंगे तो कुछ मैं नहीं देखूंगी, सबसे पहले गुजिया का सांचा ढूंढती हूँ।
0: क्या बात है। यानी डिजाइनर सांचे आप ढूंढती हैं गुजिया बनाने के लिए, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा ध्यान उसी पे जाता है।
0: बड़ा अच्छा लगा अर्चना जी आपसे बातें करके, खूब सारी यादें ताजा हो गई। तो चलिए बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: बरसात मूवी का, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में।
0: बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने चुना है मौसम के अनुरूप, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: सहेली, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं पूनम जैन बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: पूनम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए पूनम जी, आपके कौन कौन से शौक हैं?
1: म्यूजिक मेरा सबसे पहला शौक है, मुझे
0: जी
1: गाने गाना सुनना बहुत पसंद है, साथ में मुझे कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है।
0: क्या बात है। और पूनम जी आपको रेडियो सुनना पसंद है?
1: जी बिल्कुल, बहुत पसंद है।
0: और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे दो बेटे हैं, दोनों लॉयर हैं,
0: जी
1: मेरे हस्बैंड, और बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, एक बिटिया है, मेरी डॉटर इन लॉ।
0: जी क्या बात है। पूनम जी ये बताइए,
1: जी
0: जो सावन का महीना है, इसकी यादें आपके जीवन में किस तरह से जुड़ी हुई हैं?
1: सावन का महीना मेरे लिए सिर्फ महीना नहीं है, ये भावनाओं का त्योहार है।
0: जी
1: चारों तरफ हरियाली, झूले, मेहंदी, गीत और भगवान शिव की भक्ति।
0: जी
1: सावन के आते ही मन में उमंग भर जाती है। जैसे अब तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले सावन में हमेशा प्रेयर जाती थी, वहाँ पर सबके साथ, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता था।
0: और जयपुर में किस तरह से सावन आप सभी सखियां मिलकर के मनाती हैं?
1: सावन का महत्व मतलब झूले की तरह है, झूला सावन की पहचान है। कहते हैं ना, झूला झूलने से मन हल्का होता है, प्रकृति से जुड़ाव होता है,
0: जी।
1: पेड़ों पर रंगीन झूले और उन पर सहेलियों के साथ गाना, यही तो सावन की खूबसूरती है।
0: और वहाँ की क्या खास डिश होती है जयपुर की?
1: खरीद के तो जैसे हम घेवर लाते हैं, यहाँ के फेमस है सावन में घेवर, और गुलाब जामुन, पूरे
0: जी
1: खीरी बनती है, और घर में हम दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। सावन मतलब दाल बाटी चूरमा का बहुत है जयपुर के अंदर ना, दाल
0: जी
1: बाटी चूरमा बहुत फेमस है।
0: दाल बाटी चूरमा जो है, जो बाटी होती है वो तो कई तरह की बनती है ना?
1: हाँ, मसाले वाले बाटी बनती है, आलू की बाटी बनती है, सादा बाटी बनती है। हाँ
0: जी, और मेवे वाली बाटी भी तो बनती है वहां पर?
1: बिल्कुल, अंदर ड्राई फ्रूट डाल के, मेवा डाल के, वो भी बनती है।
0: जी पूनम जी, आपने कभी वहां पर जो मेले लगते हैं

0: वहाँ पर जाके आपने देखा, एंजॉय किया सखियों संग?
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है
0: जी,
1: और भव्य सवारी निकलती है, बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह, तो उसको हम देखने जाते हैं सिटी में।
0: क्या बात है, उसकी खूबसूरती देखते बनती होगी, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: बताइए पूनम जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: ये गीत सुना दीजिए, अब के सजन सावन में, ये मुझे बहुत पसंद है।
0: पूनम जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: सखियों से बातें करते हुए वक्त तो पंख लगाकर उड़ गया और दे गया बहुत सारी यादें। चलते चलते आपको बता देते हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से 12 बजे तक रिकॉर्डिंग होती है। प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे हेलो सहेली कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली कार्यक्रम। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002466 2, एसटीडी 022। अब इसका दूसरा नंबर भी नोट कीजिए। फोन नंबर है 2867 0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867 0288, एसटीडी कोड है 022। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा। और जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद।
1: आप सुन रही हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं EISSMS पुणे।
2: स्वाति की सुबह हमेशा जैसी सुंदर थी। जाते हुए भादो ने उसे सुबह की सैर पर भिगो दिया था। उसके पसंदीदा मौसम के आखिरी कुछ दिन बचे थे, जिसे वो अगली बारिश तक खुद में समेट लेना चाहती थी। भीगी भीगी स्वाति जब अपने कॉलोनी के अंदर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। टाइम देखकर वो हड़बड़ा गई। बच्चों की बस आने वाली होगी, देर हो गई आज, सोचती हुई वो घर के अंदर घुसी और सीधे ही किचन में जाकर बच्चों का टिफिन पैक करने लगी। कान्हा और वृंदा को अभिनव ने पहले ही तैयार कर दिया था। टिफिन भी उसकी महाराजिन मंजू बना चुकी थी। हर काम अपने समय से हो चुका था, लेकिन मां का दिल है ना, जब तक खुद काम में हाथ न लगाए उसे चैन ही नहीं पड़ता। बच्चों को भेजकर वो भी गुनगुनाती हुई नहाने चल पड़ी। टाइम पर ऑफिस भी तो पहुंचना था। क्या बात है, आज तो कोई मूड में लग रहा है। आईने के आगे संवरती स्वाति के गीले बालों में तौलिया बंधा था। उसे गुनगुनाते देखकर अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। अभी देर हो जाएगी यार, छोड़ो मुझे। अभिनव को प्यार से झिड़कती हुई स्वाति के चेहरे पर एक लालिमा तैर गई। एक तो इस घर में प्राइवेसी कम मिलती है, उस पर तुम हो कि मौके का फायदा भी नहीं उठाने देती, अभिनव ने शिकायत की। अच्छा जी, 10 साल की शादी है और आप अब भी नौशे मियां बने हुए हैं। अभिनव को चिढ़ाती हुई स्वाति तैयार हो चुकी थी। हाँ भाई, पुराने पति की किसको परवाह होती है, चलो तुम्हारा नया प्रेमी बन जाता हूं। अभिनव ने नई पेशकश की। ये सही आइडिया है, पुरानी शादी में नए प्यार का तड़का। स्वाति हंसती हुई घर का ताला बंद करने लगी। रोज ही दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते थे। स्वाति पहले अभिनव को उसके ऑफिस पर ड्रॉप करती, फिर अपने ऑफिस चली जाती। रोज की तरह दोनों साथ निकले और अपने अपने ऑफिस चले गए। दिन की शुरुआत

इतनी अच्छी थी, ऑफिस पहुंचते ही स्वाति का उतनी ही बुरी खबर से सामना हुआ। बीती रात उसका एक सहकर्मी आलोक नशे की हालत में ऑफिस की बालकनी से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई थी। ऑफिस में पुलिस और मीडिया का जमावड़ा था, सबके बयान लिए जा रहे थे। मीडिया वाले भी हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हुई इस दुर्घटना से स्वाति स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आलोक कल दिनभर अपनी तरक्की को लेकर खुश था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ होगा। वो न सिर्फ दुखी थी बल्कि बहुत बेचैन भी थी। इसी उधेड़बुन में वो गलती से लाइव न्यूज करते रिपोर्टर्स के फ्रेम में आ गई। हड़बड़ाई हुई स्वाति ने संकोच में खुद को लेडीज बाथरूम में बंद कर लिया। आलोक ने ऑफिस में नशा कैसे किया, आखिर कौन था उसके साथ, उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब बाहर मीडिया और पुलिस भी ढूंढ रही थी। जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है, इसका वाकई कोई भरोसा नहीं।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: स्वाति ने अपने चेहरे को धोया और बाहर की तरफ बढ़ी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठा लिया। हेलो, तुम ठीक हो? कौन? स्वाति? स्वाति वत्स बोल रही हो ना? हाँ, मैं स्वाति ही बोल रही हूँ। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं निमिष राठौड़। निमिष? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले निमिष? बिल्कुल सही, तो तुम्हें याद हूँ मैं। कैसी बात कर रहे हो, हम फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। अरे, ऐसे जुड़ने का क्या फायदा जब बस जन्मदिन और नए साल की शुभकामना ही देती हूँ। आलोक की मौत का सदमा स्वाति को कई दिन तक रहा, लेकिन निमिष के रूप में उसे उस वक्त एक फौरी आराम मिल गया। निमिष और स्वाति ने 15 साल पहले साथ में ही

यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कभी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। फेसबुक के आने के बाद सभी लोगों ने अपने पुराने दोस्तों और सहपाठियों को ढूंढ लिया था और तभी से स्वाति और निमिष भी वहां जुड़े थे। निमिष एक नामी न्यूज चैनल का हेड था और स्वाति को अपने चैनल की लाइव न्यूज के फ्रेम में देखकर ही उसे कॉल किया था। हालांकि कॉलेज में भी दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन स्वाति को कॉलेज में भी उसका इंटेलिजेंस अच्छा लगता था। उसकी वाणी और स्वभाव में हमेशा ही नरमी रहती। कुछ देर निमिष से बात करके उसका दिमागी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अब जबकि निमिष ने स्वाति के चेहरे की परेशानी कुछ सेकंड्स के वीडियो में ही समझ ली थी, तो उसे निमिष की परवाह अच्छी लग रही थी। शायद ये परवाह भी उसके स्वभाव का ही हिस्सा थी। कुछ दिन के बाद लगभग हर हफ्ते 10 दिन में निमिष का फोन आता या वो उसे कॉल करके आलोक के केस के बारे में पूछ लेती। धीरे धीरे पुराने सहपाठियों के बीच उनके वर्तमान की जानकारी साझा होने लगी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे को बताया। भाई, तुम्हारी और अभिनय की लव मैरिज है? निमिष ने पूछा। उससे भी बढ़िया, हमारी फ्रेंडशिप मैरिज है, स्वाति ने उसे नया टर्म बताया। यानी तुम्हें किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ? निमिष ने उत्सुकता से पूछा। स्वाति ने गर्व से कहा, मित्रता प्रेम की पराकाष्ठा होती है। और ये किस महापुरुष ने कहा है? निमिष ने झट से पूछा। ये एक महान स्त्री ने कहा है, स्वाति ने खिलखिला के जवाब दिया। हाँ, होगी कोई तुम जैसी स्त्री जिसने प्रेम को सही से जाना ही नहीं। निमिष संपादक था, शब्दों के जाल को बुनना उसे खूब आता था। अच्छा, सबकी प्रेम की परिभाषा अलग भी तो हो सकती है। मुझे अभिनव जैसा जीवन साथी मिला जिसने मुझे सहज रहने दिया, कभी बदलने की कोशिश नहीं की, उससे प्रेम अपने आप होता चला गया। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता वो दोस्ती नहीं प्रेम है? निमिष ने फिर से सवाल किया। अब स्वाति ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी और शादी अमर रहे, इतना ही मानवता के लिए काफी है। भाई, मेरी तो अरेंज मैरिज है, निमिष ने बताया तो स्वाति ने झुंझला के कहा, वाह, और ये प्रेम पर तब से ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, प्रेम बार बार नहीं होता। निमिष कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। मतलब तुम्हें किसी और से प्यार, तो शादी क्यों नहीं की? स्वाति ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, किया था, पर उससे कह नहीं पाया। कई साल उसे ढूंढा, उसका इंतजार किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्र निकल रही थी, फिर पूजा का रिश्ता आया और पेरेंट्स ने पक्का कर दिया। इसलिए समझता हूं कि बिना प्यार की शादी कैसे होती है। उसकी शादी को 3 साल हुए थे, जबकि स्वाति की शादी को 11 साल होने को थे। स्वाति आगे पूछना चाहती थी, लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा में उसके और उसकी पत्नी के विषय में कुछ पूछ न सकी। लेकिन उसका दिमाग अब ये जानना चाहता था कि निमिष को किससे प्रेम हुआ था। क्या वो उस लड़की को जानती है? कहीं साथ में पढ़ने वाली कोई लड़की तो नहीं थी?

हफ्ते 10 दिनों में होने वाली कॉल अब रोज होने वाली बातों में बदल गई। निविश को सही सवाल पूछना आता था। स्वाति बेखटके हर जवाब देती। उसके मन की हर परत अब निमिष को पता थी। निमिष कम बोलता था। जब भी स्वाति खुद से पूछे सवाल का रुख उसकी तरफ कर देती तो वो उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बस एक बंधन, एक जिम्मेदारी हो। उल्टे स्वाति और अभिनव की शादी और सामंजस्य वो सराहता, लेकिन बूझे स्वर में। ऐसे में स्वाति ने उससे अपने पति और रिश्ते की बात करना बंद कर दिया। अब वो बाकी विषयों पर बातें करते, जैसे राजनीति, देश, दुनिया, फिल्म, गाने और खाना भी। स्वाति और निमिष के बीच फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जब निमिष अपने ऑफिस के लिए निकलता था, उस वक्त तक स्वाति अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती थी। वो जब घर से निकलता तो उसे फोन मिला लेता और जब तक अपने ऑफिस पहुंचता तब तक स्वाति से बात करता रहता। कई बार तो वो रास्ते में ही होती और निमिष का फोन आ जाता। स्वाति ने अभिनव को निमिष के बारे में बता दिया था। उससे बात करके जो भी पुराने यादें लौटती, उनकी कहानी वो अभिनव को रोज सुनाती। अभिनव को स्वाति के दोस्तों से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के दिनों की पुरानी बातें हों या रोजमर्रा की बातें, निमिष और स्वाति के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन निमिष ने स्वाति को बताया कि जितनी बातें वो उससे करता है, उतनी बातें उसने कभी भी किसी और से भी नहीं की है, न अपने परिवार में, न ही पत्नी के साथ। सच में यार, पति पत्नी की क्या बात कर रही हो? मुझे तो लगता है मैंने कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करी जितनी मैं तुमसे करता हूं। कभी सोचा है कि कैसे तुमसे इतना सहज हूं कि बिना किसी लाग लपेट के हर बात कह पाता हूं? निमिष जानना चाहता था कि स्वाति उसकी जिंदगी में अपनी खास जगह को पहचान रही है या नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो हमेशा से इतनी बातूनी हूं। मैं तो रोज की बात रोज ना करूं तो पेट में दर्द होने लगे। वो हंसने लगी। स्वाति तो स्वाति थी, अल्लड़ और हिंट न देने वाली। हां, तुम तो कॉलेज के जमाने से ऐसी ही हो, लेकिन तुम्हारी संगत मुझे बदल रही है, वरना मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बांटता। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में स्वाति की अहमियत और बदलाव को रेखांकित किया। घुटन नहीं होती,

अति ने उससे अचानक पूछा। निमिष तैयार नहीं था। उसे लगा कि स्वाति पूछेगी कि ऐसा क्यों है कि निमिष उसके साथ इतना सहज है, या शायद ये कि उसकी संगत के निमिष पर और क्या असर हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा उसके ना बात करने की घुटन के बारे में। सवाल से निमिष ने यह तो जाना कि स्वाति को उसके स्वभाव को लेकर उत्सुकता भी है और उसकी

लेकर उत्सुकता भी है और उसकी चिंता भी। उसने थोड़ा सोच के जवाब दिया, आदत है सब अपने अंदर रखने की, खुशी हो या परेशानी, सब बस हमेशा अंदर ही रहा। इसीलिए मैं तुम्हारे जैसा एक्सप्रेसिव नहीं हूं। चलो तुम्हारे बंद ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलेगा। स्वाति ने पूरे जोश से निमिष की जिंदगी के बारे में जानने और उसके अकेलेपन को दूर करने का बीड़ा उठा लिया। उस रोज एक लंबी मुस्कान ने निमिष की आंखों को प्रदीप्त कर दिया। स्वाति को अब स्पेशल फील हो रहा था। निमिष वाकई मितभाषी था और वो अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कर पाता था, जबकि स्वाति के साथ वो हर बात बिना किसी तकल्लुफ के साझा कर लेता था। उसे खुद पर थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब भी निमिष इस बात पर जोर देता, स्वाति ऐसा दिखाती जैसे ये कोई खास बात नहीं है। दिल ही दिल में उसे ये एहसास था कि उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। आखिर उनका आपस में गजब का सामंजस्य था। इतने सालों के बाद वो संपर्क में आए थे। सिर्फ फोन और चैट पर बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात, यहां तक कि भाव भी समझ जाते। स्वाति को जो अब तक रोमांचक लग रहा था, वो अब उसे अजीब लगने लगा। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वाकई अटपटा है या स्त्री कंडीशनिंग है जो उसे ये आत्मीयता और अंडरस्टैंडिंग गलत लग रही है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी तरह निमिष को भी उनका मेलजोल इतनी तेजी से बढ़ना अटपटा लग रहा है। लेकिन निमिष ने उसे फिजूल बातों पर मंथन करने से मना किया। वो किसी भी रूढ़िवादी सोच के चलते अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता था।

0: निमिष जानता था कि स्वाति के प्रति बढ़ता लगाव दरअसल उसका खोया हुआ प्रेम ही है। वो स्वाति को कॉलेज के जमाने से पसंद करता था, लेकिन संकोच में उसे बता नहीं सका। ग्रेजुएशन के बाद स्वाति आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वो कभी उसे ढूंढ नहीं सका। 8 साल बाद जब फेसबुक पर स्वाति मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में एक बेटी भी थी। फेसबुक पर स्वाति से इतनी बात करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उस दिन घबराई हुई स्वाति को अपने चैनल की स्क्रीन पर देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने कॉलेज ग्रुप से लिए हुए उसके नंबर पर पहली बार कॉल किया था। उसे पता नहीं था कि बातों का सिलसिला उसके अंदर की चाहत को फिर भड़का देगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, निमिष ने कहा। अचानक? ठीक तो हो? स्वाति को चिंता हुई। बोलो ना, मिलोगी? उसने विनती के स्वर में पूछा। हां, क्यों नहीं, इस इतवार को घर पे आ जाओ। स्वाति ने सहज ही निमंत्रण दे दिया। घर पर नहीं, निमिष ने साफ मना कर दिया। क्यों? अभिनव से नहीं मिलना, बल्कि पूजा को भी लेते आना, स्वाति ने फिर से समझाया। नहीं यार, तुमसे मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। अभी परिवार को दोस्ती के बीच में मत लाओ ना, निमिष ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मिलते हैं, स्वाति उसकी मनोस्थिति समझना चाहती थी। करीब 6 हफ्ते फोन पर बात करने के बाद निमिष और स्वाति कॉलेज के बाद पहली बार रूबरू मिले। निमिष आज भी वैसा ही था, जबकि कॉलेज के जमाने में सीख सी दिखने वाली स्वाति अब भरी पूरी महिला हो गई थी। उसका वजन उस पर फबता था, उनका साथ कपूर और आग जैसा था। स्वाति की हंसी की खनक और बातों की खुशबू से निमिष का मन महक रहा था। स्वाति से मिलकर वो जान गया था कि अपने दिल की बात बताना या पुरानी चाहत का राज खोलना स्वाति को दोबारा खो देने जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी बात करती उसमें आधे से ज्यादा बातें या उदाहरण उसके पति अभिनव के बारे में होते। स्वाति अभिनव के साथ खुश थी, निमिष उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह को खोना नहीं चाहता था। उनकी बातचीत की तरह उनके मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी निमिष उसके ऑफिस की तरफ आ जाता और उसके साथ कॉफी पी लेता, कभी लंच पैक करवा के साथ ही ले आता और दोनों गाड़ी में ही बोलते बतियाते लंच करते। ऐसा लग रहा था कि अपनी भावनाओं और परिस्थितियों दोनों पर अब उनका कोई बस न रह गया हो। जितनी देर वो स्वाति के साथ रहता उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कायम रहते। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी तरह से स्वाति के प्यार में डूबा है। दूर से देखने वाले भी उनके बीच का स्पार्क महसूस कर सकते थे। ऐसे में ये बात उन दोनों को खुद महसूस न हो रही हो, ये संभव नहीं था। बकौल निमिष, वो इस अनाम से प्यारे रिश्ते में कोई सवाल नहीं चाहता था और अपने बीच तेजी से बदलती भावनाओं को वो जानबूझकर अनदेखा करने लगा। स्वाति को निमिष की आंखों का प्यार और आकांक्षाएं साफ दिख रही थीं। मजाक मजाक में वो उसे कई बार प्यार में न पड़ने की चेता चुकी थी। निमिष भी उसकी चेतावनी को हर बार काश ऐसा ही हो जाए बोलकर हंसी में उड़ा देता। वो जानता था कि स्वाति को जिस प्यार के होने का डर सता रहा था वो पहले से ही उसके जीवन का सच था। शायद उसे खुद भी प्यार में पड़ जाने का डर हो।
1: गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: अपने सपनों को देनी है सही उड़ान और करियर बनाना है शानदार, तो कदम बढ़ाइए AISSMS पुणे की ओर। 100 वर्षों से अधिक की शैक्षणिक परंपरा के साथ AISSMS साकार कर रहा है देश भर के विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य। इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या फार्मेसी, MBA हो या होटल मैनेजमेंट, साथ ही पॉलिटेक्निक, ITI, BBA या स्कूल एजुकेशन, हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और करियर के बेहतरीन मौके यहाँ मिलते हैं। सावित्रीबाई फूले पुणे विद्यापीठ द्वारा लगातार 3 वर्षों तक बेस्ट कॉलेज अवार्ड से सम्मानित संस्थाएं, प्रैक्टिकल लर्निंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर, आधुनिक लैब्स, मजबूत प्लेसमेंट्स और 3 लाख से अधिक एलुमनाई नेटवर्क के विश्वास से भरा हुआ NAC A+ और MBA मान्यता प्राप्त संस्थाएं और पुणे शहर की मध्य में मेट्रो कनेक्टेड कैंपस। तो देर किस बात की, एडमिशन के लिए आज ही 8496045045 नंबर पर संपर्क करें या विजिट करें www.aissms.org।
1: आप सुन रहे हैं पिटारा। इस कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे AISSMS पुणे।
2: निमिष का शक सही था। स्वाति समझ रही थी कि दोस्ती और उनके वर्तमान समीकरण के बीच बहुत फर्क आ चुका है, और ऐसा सिर्फ निमिष की तरफ से नहीं था। उसने स्वयं भी यह समझ लिया था कि अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति बढ़ता उनका आकर्षण भी है। ऐसे में वो इस बढ़ती लत को यहीं रोक देना चाहती थी। निमिष, हम दोनों खुशहाल परिवार में रहते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए कि इस दोस्ती से अभिनव या पूजा को इनसिक्योरिटी ना हो। तुम ना ओवरथिंकिंग की दुकान हो यार, बेवजह परेशान होती रहती हो, इतना मत सोचो। निमिष ने समझाया कि उनकी दोस्ती में उनके पार्टनर्स के लिए उसे कोई धोखा नहीं दिख रहा है। यार तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, अगर दोस्ती से ज्यादा है तब भी ये कोई चीटिंग नहीं है, हमें भी खुश रहने का हक है। अपने पसंदीदा इंसान के साथ समय बिताना अगर किसी को धोखा लगे तो लगा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निमिष, ये दोस्ती नहीं है, ये जो तुम्हारी आंखों में दिखता है उससे मुझे घबराहट होती है। मैं अभिनव को धोखा नहीं दे सकती, बात को समझो, हमें मिलना फौरन बंद करना होगा। प्यार व्यार में पड़ जाओगे तो बस, हमें बात भी कम करनी चाहिए। स्वाति के लहजे में चिंता थी। तुम्हें मुझसे प्यार हुआ क्या? नहीं ना, क्या ही फायदा तब इतना सोचने का। निमिष कह नहीं रहा था बल्कि पूछ रहा था। फिर भी ये ठीक नहीं है, किसी से मानसिक लगाव भी इमोशनल चीटिंग ही है। स्वाति ने अपना स्टैंड क्लियर किया। पागल मत बनो स्वाति, ये जो वक्त मैं तुम्हारे साथ जीता हूं वो मेरे पूरे दिन की खुराक है। मुझे नहीं पता तुमसे मिलने से पहले मैं कैसे जिया, मुझे बस इतना पता है कि मेरे नीरस जीवन में जो भी रंग है उसकी वजह यही समय है जो मैं तुमसे बात करते हुए, तुम्हें देखते हुए बिताता हूं। निमिष ने कातर आंखों से स्वाति से उसका चैन न छीनने की गुजारिश की।
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते

हैं, लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: स्वाति समझ रही थी निमिष उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहता है, लेकिन स्वाति से दूर होने का डर उसे रोक रहा था। उस रोज स्वाति जब उससे मिलकर अपने घर के लिए निकली तो उसने निमिष को कोई वादा नहीं किया, बल्कि उसे सांत्वना देकर चली गई। धीरे धीरे उसने निमिष के कॉल उठाना कम कर दिया। जब भी वो मिलने को कहता, स्वाति कोई न कोई बहाना बना देती। वो ऑफिस तक आ जाता, तब भी वो मीटिंग का बहाना करके उससे नहीं मिलती। ऐसा नहीं था कि उसके इस व्यवहार से सिर्फ निमिष दुखी था, दुखी तो वो खुद भी थी, लेकिन उसे पता था कि उसकी ही तरह निमिष भी शादीशुदा है। वो जितना अपने और निमिष के रिश्ते को पड़ताल करती, उसे अपना कदम सही लगता। स्वाति अभिनव से प्यार करती थी, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी और वो साथ में खुशहाल भी थे। फिर क्यों उसने निमिष को इतना आगे बढ़ने दिया? मुझे न प्यार की तलाश है न प्रेमी की, कैसे संभव है एक इंसान के प्रेम में होते हुए किसी दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाना? क्या मैं आकर्षित हूं या मुझे भी निमिष से प्रेम हो रहा है? वो जितना खुद को मथ रही थी, उतने ही अलग अलग जवाब उसके जहन में आ रहे थे। नहीं, मुझे निमिष से प्यार नहीं है, मुझे बस ये एहसास अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी परवाह करता है। निमिष मुझसे बात करता है और मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता मानता है, मुझे सिर्फ इस एहसास से प्यार है। उसे लगा कि जब से निमिष ने अपने और अपनी पत्नी पूजा के बीच के संबंधों के विषय में बताया, तब से उसे निमिष की ज्यादा फिक्र होने लगी थी। निमिष और पूजा के संबंध किसी बुजुर्ग जोड़े से भी ज्यादा नीरस थे। उनके बीच न तो संवाद था न ही दैहिक संबंध, कम से कम निमिष का तो यही कहना था। उसके जीवन के बारे में सुनने के बाद स्वाति को उससे सहानुभूति होने लगी थी। उस जैसा सुलझा हुआ और प्यारा इंसान अपने जीवन में हर खुशी का हकदार था, प्यार का भी। स्वाति अपनी सोच की परतों से खुद ही घबरा रही थी। कोई भी तर्क, कोई भी वजह इस बात को सही नहीं ठहरा सकती कि मैं एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही हूं और ऐसे में अपने 15 साल पुराने एक सहपाठी के लिए मेरा दिल पिघल रहा है। स्वाति ग्लानि से भर गई और उसने निमिष से हर संवाद खत्म करने का फैसला लिया। उसे निमिष के साथ बिताया हुआ हर पल अभिनव के साथ की हुई बेवफाई लग रहा था। वो अभिनव से कुछ छुपाती नहीं थी, लेकिन निमिष के बदले हुए व्यवहार को उसने अभिनव के सामने जाहिर नहीं किया था। वो जानती थी कि अभिनव पजेसिव या कंट्रोलिंग पति नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे पूरी बात बता न सकी। ये भी उसके अपने मन का चोर था शायद। वो निमिष को दिए हुए समय की भरपाई अभिनव के साथ अच्छा वक्त गुजार के करना चाहती थी। स्वाति ने दीपावली की पुरानी लाइट्स को स्टोर से निकाल के अपनी हरी भरी बालकनी में लगाया। सुनहरी लाइट्स में पौधों की खूबसूरती और निखर गई। बेंत के सोफे पर नए चढ़ाए कुशन कवर सज रहे थे। अभिनव घर में घुसा तो स्वाति ने तैयार होकर उसका स्वागत किया। अभिनव के लिए ये सुखद आश्चर्य था। बालकनी में गर्मा गर्म कॉफी के मग उसका इंतजार कर रहे थे।
1: क्या बात है, अभी से दिवाली की सजावट शुरू हो गई।
2: हट, शादी के कई साल बीत जाएं तो यही होता है, स्पेशल फील कराने की कोशिश का अंजाम तो देखो जरा।
0: उसने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया।
3: सॉरी बाबा, मजाक कर रहा था। जीवन में रस बना रहे उसके लिए प्यार में ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं।
0: देर रात तक दोनों वहीं बैठकर बातें करते रहे। घर और नौकरी की भागदौड़ में दोनों को आपस में बातें करने का मौका कम मिलता था। हालांकि स्वाति अपने हिस्से की बात रोज अभिनव से बोल ही देती।

थी, लेकिन वो एक तरफा संवाद था। अभिनव ने डिसाइड किया कि अब से हर शाम वो दोनों साथ में कॉफी पियेंगे और हर हफ्ते में कम से कम एक बार साथ में अपने दफ्तर से अलग कहीं जाएंगे। स्वाति को अब हल्का महसूस हो रहा था। हवा में घुले संगीत के साथ उसके जहन में एक चेहरा बार बार उभर रहा था, लेकिन उसने खुद को कड़ाई से रोक लिया और अभिनव को निहारने लगी। कितनी समानता है अभिनव और निमिष में। दोनों कम बोलते हैं, दोनों को मेरी परवाह है। काश हम दोस्त बन के रहते, काश उसे मुझसे प्यार न होता। मुझे उसकी कमी कितनी खल रही है, लेकिन निमिष ने मुझसे संवाद की अपनी कोशिश कुछ दिनों में ही बंद कर दी। प्यार तो नहीं ही रहा होगा उसे, शायद बस पसंद हो या बस आदत हो गई हो बात करने की। शायद कल किसी और की आदत हो जाएगी उसे। स्वाति सोच ही रही थी कि अभिनव ने पूछा, अरे सुनो, वो तुम्हारे ड्राइव टाइम कॉल का क्या हाल है? अभिनव ने उससे निमिष का हाल पूछा था, लेकिन उसकी आवाज के साथ ही स्वाति के दिल में कुछ झन्ना के बिखर गया। क्या मैं सिर्फ उसकी ड्राइव टाइम कॉल थी?

इन सब से दूर निमिष ने अपने दिल के शोर को न्यूज रूम के शोर में दबा दिया। अब वो पहले से ज्यादा खामोश, पहले से ज्यादा अकेला था। प्यार का इजहार न करके वो इतना अकेला तब भी नहीं था जब 15 साल पहले स्वाति चली गई थी। उसको ढूंढना, अपने दिल में बुने सपनों में खोए रहना उसका पसंदीदा काम था। फेसबुक पर स्वाति का मिल जाना उसके लिए किसी त्योहार जैसा बड़ा दिन था। वो उसे वर्चुअल दुनिया में देखकर खुश रहता। इन दिनों उसकी हर पोस्ट दसियों बार पढ़ता और उसकी तस्वीरों को अपने फोन के फोल्डर में छुपा के रखना उसके प्रिय शगल थे। निमिष के हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। उसके चैनल की टीआरपी ने उसे फिर से नंबर वन बना दिया था। न्यूज रूम में जश्न जैसा माहौल था। पूरे साल हर हफ्ते नंबर वन रहना आसान नहीं था, लेकिन निमिष ने ये जीत हासिल की थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि निमिष का अधीनस्थ प्रोड्यूसर राकेश उसके पास आया। सर, इस साल आपको यूरोप की कपल ट्रिप के वाउचर मिलने वाले हैं, उसने निमिष को बताया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? निमिष ने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। सर, अंदर की खबर है। आप अपने साथ किसे ले जाएंगे? राकेश ने हिम्मत करके पूछा। क्यों? निमिष ने आंखें उचका के पूछा। सर, मुझे ले चलिएगा ना, इस बार आप किसी को वाउचर दीजिएगा मत, राकेश ने फिर से खुशामद की। तुम क्या मेरे जीवन साथी बनने की फिराक में हो? निमिष ने हंसते हुए उसकी मौज ली। नहीं सर, आप कपल वाले ट्रिप, कॉन्सर्ट टिकट, मूवी और डिनर वाउचर सबको बांट देते हैं, इस बार चलिए ना, साथ चलते हैं, राकेश ने अपनी अर्जी का कारण स्पष्ट किया। जाओ अपना काम करो, निमिष ने उसे ठेल के वापस उसके डेस्क पर भेज दिया। राकेश को उसके 2-3 साथियों ने घेर लिया। अबे तुम क्यों जाओगे? हम जाएंगे, एक ने कहा। अरे भाई, मेरी ना शादी हुई है, मेरा हनीमून हो जाएगा, मुझे और मेरी बीवी को जाने दो, दूसरे ने विनती की। अरे यार, तुम्हारे हनीमून का खर्चा चैनल थोड़ी ना देगा, राकेश ने उसको डपटा। राकेश भाई, तुम उनसे कह दो ना कि तुम्हें गोद ले ले, पहले ने सुझाव दिया। ये सही है, निमिष सर को पापा बना लो, उनके जीवन में नौकरी के सिवा कुछ है भी नहीं, एक रेडीमेड बेटा ही मिल जाएगा। सर सिंगल हैं? नई एंकर नैना ने अचरज से पूछा। तुमको नहीं पता? सब कहते हैं सर अपने जमाने के दिल जले आशिक है, शायद प्रेमिका मिली नहीं या मर गई हो, क्या पता, दूसरे ने बताया। कितना गॉसिप करते हो यार, जाओ अपना काम करो सब, राकेश ने अपने डेस्क से भीड़ को भगाया और ग्लास केबिन में काम करते शांत निमिष की ओर देखा और सोचने लगा। कोई कह सकता है कि इतने अकेले हैं? शायद तभी पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, छुट्टी नहीं लेते, घूमने नहीं जाते। बीच में कुछ महीने चेहरे की रंगत बदली थी, खुश रहते थे, अब फिर से पहले जैसे बुत बन गए हैं। कांच की दीवार के उस पार निमिष सोच रहा था कि स्वाति से बात शुरू हुई तो वो खुद नहीं जानता था कि पुरानी भावनाएं उस पर यूं हावी हो जाएंगी। किसी को प्यार से दूर करना कितना आसान था, न जवाब का इंतजार, न रूठने का खौफ। ग्रेजुएशन के 3 साल मिलाकर करीब 18 सालों से उसने स्वाति को चाहा था। इतने सालों में उसने इस तड़प को कभी महसूस नहीं किया था। पिछले 1 महीने से स्वाति से उसकी बात बंद है। स्वाति के पीछे भागते 2 हफ्तों में उसने तिरस्कार को समझा था। वो समझता था कि स्वाति अभिनव से ही प्रेम करती है और उसे अपने बारे में आश्वस्त रखने के लिए ही तो निमिष ने पूजा के नाम का झूठ गढ़ा था। वो स्वाति की जिंदगी में अपनी छोटी सी जगह से खुश था। शायद उसे अपनी आकांक्षाओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, काश दोस्ती ही बनी रहती। लेकिन पीछे लौटना

संभव नहीं था, इसलिए उसने स्वाति से कोई संपर्क न रखने का निश्चय किया और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया ताकि भूले से भी वो उसकी जिंदगी में झांकने ना जाए।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह, वाचन स्वर जयंत पात्रिकर का, संपादन सहयोग स्नेहल भिसे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे कयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार कयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है गब्बर मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आई,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे, 18 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
5: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
6: इंजीनियरिंग में पाकू करियर बनाऊ छे तो डिप्लोमा बीई के D2D माटे बेस्ट ऑप्शन छे। केजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सावली।
7: KGIT सावली आपे छे 100% जॉब प्लेसमेंट नी गारंटी।
6: विजिट अवर वेबसाइट kgit.org टुडे।
8: वाह, तमारा कपड़ा नू फिटिंग तो जोरदार छे ना।
9: थैंक्स टू व्हाइट हाउस, एमनी फिटिंग नी साथे एमनी ऑफर पण जोरदार छे।
8: कई ऑफर?
9: ज्या प्रख्यात ब्रांड्स ना कपड़ा नी खरीदी पर पैंट अने शर्ट स्टिचिंग फ्री छे।
8: बस एटलू ज?
9: 5 पैंट शर्ट स्टिच करावो अने मेळवो ₹5,000 सुधी नी बचत।
8: तो हवे घरवाड़ी नी शॉपिंग पण पाकी।
9: व्हाइट हाउस, प्रीमियम फिटिंग, स्मार्ट सेविंग्स, एट रावपुरा।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। सुन ले ए महबूब, मेरी दुनिया को तेरे साथ की जरूरत है, मेरी आंखों को तेरी एक नजर का इंतजार, और मेरे दिल को विश्वास है तेरे सहारे का। जब तन्हाइयां मेरा दामन थाम लेंगी तो तेरी यादें मेरे साथ चलती रहेंगी, जब जिंदगी की राहें मुश्किल हो जाएंगी तो तेरी मोहब्बत मेरा हौसला बन जाएगी। मुझे दौलत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, बस तेरे दिल में एक छोटी सी जगह मिल जाए, यही मेरा ख्वाब है।

इस दिल का क्या करूं जो हर पल तुम्हारा ही नाम लेता है। बहुत दिनों से अपने जज्बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन अब खामोशी मेरा साथ नहीं देती। पहली बार प्रेम पत्र लिखा है मैंने। अगर मेरी बातें तुम्हें नागवार गुजरे तो इसे नादान दिल की भूल समझकर माफ कर देना। बस इतनी सी इल्तिजा है तुझसे कि तू बस नाराज ना होना।

जिस राह पर तुम बढ़ोगे उस राह की हर आहट में मुझे ही पाओगे। हमारी जिंदगियां अब दो नहीं रही, एक ही धड़कन की दो सदाएं बन चुकी है। तुम्हारे दिल की हर अनकही बात मेरी नजरें कब की पढ़ चुकी हैं। अब लफ्जों की जरूरत नहीं, खामोशियां ही जुबा बन गई है। अब लफ्जों की जरूरत नहीं, खामोशियां ही जुबा बन गई है। तेरी मोहब्बत ही अब मेरी दास्तां बन गई है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। आज न जाने क्यों ये खामोश रात भी मुझसे कुछ कह रही है, हवा की हर सरगोशी में जैसे तुम्हारा ही नाम सुनाई देता है, दिल की धड़कनें भी कोई अनजान सा नगमा गुनगुना रही है जिसे सिर्फ मेरा दिल ही समझ पा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मोहब्बत ने बिना दस्तक दिए मेरे दिल में अपना आशियाना बना लिया हो। अब हर खामोशी में एक मीठी सी आहट है, हर तन्हाई में तुम्हारा एहसास, शायद इसी अनकहे एहसास का नाम मोहब्बत है।

आज न जाने क्यों ये होठ यूं ही गुनगुनाए जा रहे हैं। दिल में जो राज बरसों छिपा कर रखा था, लगता है अब आंखें उसे ही बया कर देंगी। डर ये है कि कहीं मेरी मुस्कान सबको मेरी मोहब्बत का पता ना बता दे। अजीब सी बात है, इस एहसास में मिठास भी है और एक मीठी सी चुभन भी। लगता है इस दिल ने प्यार का ऐसा जाम पिया है जिसमें शहद भी घुला है और जहर भी। अब खुदा ही जाने ये राज मेरे दिल में रहेगा या नहीं आ जाएगा।

जब भी बदरा घिर आते हैं, दिल में एक गड़गड़ाहट सी होती है। बिजली की हर चमक मेरे दिल को और बेचैन कर जाती है। ऐसे मौसम में दिल कहता है, काश साजन की बाहों का सहारा मिल जाए। फिर ना बरसात की बूंदों का डर, न गरजते बादलों का, उसे एक पल में सारी दुनिया सिमट जाए। बस धड़कनों की सरगम हो, बारिश की रुंझुन हो और साजन का साथ। शायद मोहब्बत का सबसे हसीन मौसम वही होता है जब बरसात बाहर भी बरस रही हो और दिल के अंदर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने बस कुछ ही पलों के बाद।
1: श्रोता मित्रों 93.9 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून कर्यु छे विविध भारती नू वडोदरा केन्द्र। श्रोता मित्रों सवारे 8:30 लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गीतों कार्यक्रम चित्रलोक जेना प्रायोजक छे
2: KJ इंस्टीट्यूट ऑफ एंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी।
1: डिप्लोमा बीई तथा D2D एंजीनियरिंग ना अभ्यास माटेनो श्रेष्ठ विकल्प जेमा मळे छे 100% जॉब प्लेसमेंट नी खात्री। KJIT सावली।
3: अशोका द ग्रेट एक्सक्लूसिव एथनिक एंड दुल्हा कलेक्शन वडोदरा नो आधुनिक शोरूम नवरंग सिनेमा रोड रावपुरा वडोदरा।
1: MK फर्नीचर 5 माळ नो भव्य शोरूम प्रतापनगर ब्रिज नीचे वडोदरा। सवारे 10 फोन इन तथा अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों जिना प्रायोजक छे
3: आर्क ब्लाइंड्स शिवाकृति बिल्डिंग दांडिया बाजार वडोदरा।
1: सेहत आपकी सुरक्षा हमारी अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी
3: ये है आर्के ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।
0: कार्यक्रम तराने नए पुराने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए ये बताना चाहते हैं कि आज फिल्मकार जी ओम प्रकाश जी की पुण्यतिथि पर उनकी फिल्मों के कुछ चुनिंदा गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपकी कसम फिल्म का ये गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आया सावन झूम के फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स OTT, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
4: मेरा साया साथ होगा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने, और अभी आपको सुनवा रहे हैं इसमें जी ओम प्रकाश फिल्मकार की फिल्मों के कुछ चुनिंदा गीत।

विधाता फिल्म के इस गीत में आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और अनवर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, तराने नए पुराने।

रंगीला फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज है महबूब के भूल, ए आर रहमान का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। समाचार अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे थोड़ी ही देर में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा है कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में आज ये बात कही।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
1: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति और हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा हुई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत और इजराइल के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। सरकार ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तारित स्वरूप में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता रहा है। लोकसभा में आज विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत परिषद में स्थायी और अस्थायी श्रेणियों के विस्तार और विकासशील देशों के अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर लगातार बल देता रहा है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने कॉरपोरेट जगत और वित्तीय पेशेवरों को बॉस स्कैम की प्रति आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर ऐसी शिकायतों में तेज वृद्धि हुई है। इनमें खाता विवरण और नियामक संचार के बहाने पेशेवरों और कारोबारियों के व्हाट्सएप खातों को हैक किया जा रहा है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और

0: राजस्थान सहित कई राज्यों से एक ही तरह की घटनाएं सामने आई हैं। भारत अगले वर्ष पहले ग्लोबल साउथ फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा। मुंबई में आज ब्रिक्स वेब्स बाजार के दौरान इसकी घोषणा की गई। फिल्म और मनोरंजन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों की भी घोषणा की गई। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार के अरावली के संरक्षण और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की है। श्री यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से गुरुग्राम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी का अभियान बनाकर उल्लेखनीय कार्य किया है। केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोझिकोड, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड जिलों में रेड अलर्ट जारी है। इसके अलावा 4 अन्य जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: परिंदा फिल्म का ये गीत आपने सुना। आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजें थी। खुर्शीद हल्लौरी ने इसे लिखा और राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
2: वंदे मातरम।
1: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
3: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है। रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
1: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
4: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं।
5: परेशान हूं मैं।
4: विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
6: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
4: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: सुखविंदर सिंह और रिचा शर्मा की आवाजों में ताल फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, ए आर रहमान ने संगीत से सजाया।
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम
2: चलते रे इश्क में पड़ जाते
1: पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
3: ओ केटिको बर्फ बदन है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
4: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
4: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।

0: जान है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
2: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
2: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
1: बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके
1: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर कार्यक्रम तराने नए पुराने।

0: आ रहे हैं महबूबा महबूबा महबूबा विविध भारती पर सुन जरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं सोनू निगम जयेश गांधी और अमृता काक की आवाजों में ये गीत जिसे लिखा है समीर ने हिमेश रेशमिया का संगीत फिल्म मैंने प्यार क्यों किया।

0: मैंने प्यार क्यों किया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम और जयेश गांधी के साथ अमृता काक की आवाजें, समीर के बोल, हिमेश रेशमिया का संगीत। इसके साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: तराने नए पुराने,
0: विविध भारती पर अब सुनिए झरोखा के अंतर्गत आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा। आज सुनिए सातवीं कड़ी सुनेगा। गायिका शुभा मुद्गल, कलाकार हैं प्रस्तुति कांचन प्रकाश, संगीत की और इसे सुन सकते हैं शाम 6:45 से। 7 बजे का समय है जयमाला का और शाम 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए अनमोल यादें। इस कड़ी में फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत की 6वीं कड़ी सुन सकते हैं। हृदय परिवर्तन, ये नाटिका सुन सकते हैं रात 8 बजे से हवा महल में। मूल कहानी ओ हेनरी की है जिसका हिंदी नाट्य रूपांतरण किया है रमेश उपाध्याय ने, निर्देशन मधुप शर्मा का। चित्रलोक के अंतर्गत नए जमाने के गीत सुन सकते हैं 8:15 से। 8:45 से समाचार संध्या आपके लिए। इस कार्यक्रम का समय 9 बजे का। 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम सुनिएगा, केंद्रित है फिल्मकार जे ओम प्रकाश पर। 10 बजे से छाया गीत। अब कल यानी 8 अगस्त के कार्यक्रमों के बारे में बता देते हैं। सुबह वंदनवार कार्यक्रम 6:05 से सुनेगा। श्री रामचरित मानस की 274वीं कड़ी सुन सकते हैं सुबह 6:35 से। 6:45 से संगीत सरिता में सुनिए श्रृंखला वर्षा चौमासा की 8वीं कड़ी। इसे ही आप कल शाम 6:45 पर भी सुन सकते हैं। कलाकार हैं गायिका शुभा मुद्गल। सुबह 7 बजे से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के, 8 बजे से समाचार। त्रिवेणी 8:15 से 2 बजे से पुनः प्रसारण। चित्रलोक 8:30 से सुबह 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार गुलशन बावरा पर। 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी का पुनः प्रसारण, कहानी दिल की ग्रह, लेखिका हैं विनीता स्थाना। मैटिनी शो कार्यक्रम 11 बजे से सुन सकते हैं। क्रिकेट कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी से यूनुस खान की बातचीत की 2री कड़ी सुन सकते हैं। 12 बजे से सुनिए हिंदी में समाचार और 12:05 से यादों की महफिल। कार्यक्रम सुरीला सफर का समय है 2:01 का। 2 बजे से त्रिवेणी, 2:15 से दोपहर समाचार और 2:30 से आनंद दीजिएगा सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। मन चाहे गीत कार्यक्रम 3 बजे से और 3:30 से नाट्य तरंग के अंतर्गत कल सुनेगा किसी एक फूल का नाम लो। इस नाटक का पहला भाग कल सुनेगा मूल गुजराती लेखक है मधुराय, हिंदी रूपांतरण किया है ज्योति व्यास ने, निर्देशन सुशील बैनर्जी का। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, कोरियोग्राफर शबीना खान से विधि जैन की बातचीत की 1ली कड़ी। छाया गीत का पुनः प्रसारण शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने कार्यक्रम 5:30 से। संध्या रंजन कार्यक्रम 6:35 से सुन सकते हैं और 7 बजे से कल शाम विशेष जयमाला कार्यक्रम में सुनिए अभिनेता निर्देशक निर्माता मनोज कुमार द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम। इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा शाम 7:45 से। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनो कहानी श्रृंखला में पंच परमेश्वर इस कहानी की 1ली कड़ी सुनेगा। कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने, वाचन स्वर अमरकांत दुबे का। 8:15 से चित्रलोक, समाचार संध्या 8:45 से 9 बजे से आपके लिए। और आज के फनकार कार्यक्रम कल रात 9:30 से। कार्यक्रम केंद्रित है गुलशन बावरा पर, गीतकार है। 10 बजे से छाया गीत और 10:30 से

आप सुन रहे थे आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण झरोखा के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम संध्या रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

दिव्य कुमार, राजीव सुंदरसम और निखिल कसारेकर की आवाजों में आप सुन रहे थे एबीसीडी 2 फिल्म से ये गीत। मयूर पुरी ने इसे लिखा, सचिन जिगर का संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, किसना फिल्म का ये गीत। सुखविंदर सिंह स्माइल दरबार और आयशा की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल स्माइल दरबार का संगीत।

रुकविंदर सिंह, इस्माइल दरबार और आयशा की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल आपने सुने। इस्माइल दरबार का संगीत किसना फिल्म के इस गीत में। इसके साथ ही आज का संध्या रंजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: संगीत सरिता के श्रोता मित्रों, वर्षा चौमासा श्रृंखला की आज की कड़ी में अब मैं पूछती हूँ शुभा जी से, आज वो किस राग के बारे में बात करेंगे?
1: राग का नाम तो देस है और बहुत ही सबको परिचय भी होगा इस राग से। इसका ऐसे यानी मल्हार का जैसा संबंध है वर्षा ऋतु से, वैसे तो नहीं संबंध है क्योंकि देस में आपको हर प्रकार की बंदिशें मिलेंगी, लेकिन वर्षा संबंधित साहित्य भी देश में काफी मिलता है। और मुझे लगा कि ऐसा कुछ साहित्य, ऐसा एक पद प्रस्तुत किया जाए जिसमें प्रकृति का चित्रण तो हो ही, लेकिन कुछ ऐसी बात हो जो कि जिसमें प्रकृति ही स्वयं वृंद के रूप में वर्षा मंगल मना रही हो।
0: प्रकृति स्वयं वृंद के रूप में, मतलब ये जैसे वृंद गान का ही ये हो गया
1: जी, तो मतलब एक पूरा ऑर्केस्ट्रा जो है वो प्रकृति जो है तैयार कर चुकी है वर्षा की बधाई देने के लिए
0: जी।
1: तो ये मुबारक नाम के कवि की रचना है और बिलग्राम जो जगह है उसके ये कवि हैं, वहाँ बहुत सारे कवि, बहुत सारे साहित्यकार रहे। और मुबारक लिखते हैं कि बाजत नगारे घन, घन के नगाड़े बज रहे हैं, ताल देत नदी नारे, ताल देत नदी नारे, जो पानी लपलप करता है नदी नालों में वो भी ताल दे रहा है साथ में, झींगुरन झांझ, झींगुर जो है वो झांझ बजा रहे हैं, झींगुरन झांझ भेरी भृंगन बजाई है, और भृंग जो है वो भेरी बजा रहा है, तो अब देखिए पूजा पूरा एक ऑर्केस्ट्रा तैयार है। बाजत नगारे घन ताल देत नदी नारे, झींगुरन झांझ भेरी भृंगन बजाई है, कोकिल अलापचारी
0: जी, तो कोकिल का काम है ही
1: अलाप करना, नील ग्रीव यानी नीलकंठ
0: पक्षी है
1: जी, नील ग्रीव नृत्यकारी, वो गर्दन चला के नृत्य करता है, कोकिल अलापचारी नीलग्रीव नृत्यकारी, पौन अर्थात पवन, पौन बीनधारी, वो बीन बजा रही है, चाटी चातक लगाई है, उसके साथ जो चाटी बज रही है वो चातक की है।
0: कितना सुंदर। हाँ,
1: कई अंतरे हैं इस पद में, लेकिन मैंने एक तीन अंतरे चुने हैं गाने के लिए। मणिमाल जुगनू, वर्षा में यदि आप पहाड़ों में देखें तो जुगनू आपको दिखेंगे बारिश के समय में
0: जी।
1: मणिमाल जुगनू मुबारक तिमिर धार, अंधकार जो है उसमें जुगनू चमक रहे हैं ऐसे जैसे कि मणि की माला हो। मणिमाल जुगनू मुबारक तिमिर धार, चौमुख चिराग चारू चपला जराई है।
0: ये जो अनुप्रास है च च च का
1: जी, बिल्कुल
0: जी, इसमें तो, श्लेष भी है
1: जी
0: और अनुप्रास भी है, यमक भी है
1: जी। और कितना देखिए, चिराग जो है वो वैसे हिंदी भाषा का शब्द नहीं लगता, लेकिन चौमुख चिराग चारू चपला जराई है, कितना बढ़िया एक जो सांझी हमारी विरासत है उसका एक छोटा सा उदाहरण है
0: जी।
1: बालम विदेश नए दुख को जन्म भयो, तो विरहनी के लिए हमेशा वर्षा ऋतु में बालम का साथ ना होना वो हमेशा दुख की,
0: और एक नया दुख है।

0: हाँ, और तो है ही है कि बारिश हो रही है, ये हो रहा
1: ये हो
0: है,
1: रहा है
0: सब लोग खुशी मना रहे हैं और हमारे हम
1: जी।
0: क्या खुशी मनाएं। बालम विदेश नए दुख को जन्म भयो, पावस हमारे लिए विरह बढ़ाई है। उसने तो हमारे लिए बहुत ही विरह को और भी आग लगा दी
1: बढ़ाने का
0: है।
1: काम कर दिया है। हालांकि ये वाद्य वृंद जो है वो अपनी चरम सीमा पे चढ़ जाता है, और
0: बिल्कुल
1: ऐसा ऐसा एक ध्वनि का एक समुदाय जो है वो बहुत खुशियां देता है, लेकिन विरहिणी के लिए वो कोई खुशी की बात नहीं, अलग से एक नया दुख उसने पाया है।
0: बिल्कुल
1: तो शुभा जी, आपके स्वरों में भी हम इस दुख को, इस सुंदरता को महसूस करेंगे।
0: जी, देश
1: आप
0: राग में और तीन ताल में
1: जी, अच्छा, आप क्या देसराग का चलन पहले सुनाएंगी?
0: जी जरूर। वैसे इसे मिश्रित करके भी बहुत सारे लोग गाते हैं, लेकिन मूल रूप इसका

0: तो राग देश में हमने सुनी मुबारक की रचना, बहुत ही बढ़िया सी बंदिश। बंदिश के तहत मैं दोनों रूप में सोचती हूँ कि शब्द रचना भी और संगीत रचना भी। और इसे स्वर देने वाली हमारी अतिथि कलाकार शुभा जी अभी इजाजत चाहते हैं। शुभा जी नमस्ते।
1: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे हैं श्रृंखला वर्षा चौमासा, प्रस्तुति प्रख्यात गायिका शुभा मुद्गल की। संगतकार हैं हारमोनियम पर सुधीर नायक, तबले पर संगत की अनीश प्रधान ने, ध्वन्यांकन चित्रलेखा जैन, तकनीकी सहयोग विनीता ढोलकिया।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश।

विविध भारती पर कार्यक्रम जय माला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस देशभक्ति गीत से।

0: योद्धा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। बी प्राक और साथियों की आवाजें, मनोज मुंतशिर के बोल, तनिष्क बागची का संकेत। आइए अब सुनते हैं भारतीय सेना गीत।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल।
1: नमस्कार, आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा प्रादेशिक समाचार प्रवेश अड़ियचा वांचे छे। मुख्य समाचार, 7,000 करोड़ डॉलर रूपयाथी वधुना एफडीआई साथे विदेशी रोकाण मेळवामां गुजरात टोच पर। गांधीनगरमां विकसित गुजरात सम्मेलनमां मुख्यमंत्रीनुं निवेदन। राज्यमां गोबरधन योजना अंतर्गत आगामी समयमां 25 करोड़ रूपयाना खर्चे 20,000 व्यक्तिगत बायोगेस प्लांट स्थपाशे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूना हस्ते कच्छना कारीगर केशाभाई वणकरने राष्ट्रीय हाथसाड़ पुरस्कार एनायत। बनासकांठानी 5,000 वर्ष जूनी हस्तकड़ा एप्लिक वर्क ने जीआई टेगनी मान्यता मिली। महेसाणामां योजायेली राज्यकक्षानी फूटबॉल स्पर्धा में पाटणनी टीमे कांस्य चंद्रक जीत्यो। समाचार विगतवार, मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में विकसित गुजरात सम्मेलन योजाई गयु। आ प्रसंगे श्री पटेले कहूं गुजरात राज्य 7,000 करोड़ डॉलर रूपयाथी वधुना विदेशी प्रत्यक्ष रोकाण एफडीआई साथ समग्र देश में विदेशी रोकाण मेळवामां टोच पर रह्यु छे। नीति आयोग इन्वेस्टमेंट फ्रेन्डलीनेस इंडेक्स एटले के रोकाण अनुकूल व्यवस्था आईएफई 2026 मुजब वर्ष 2019 संचित एफडीआई मेळवामां गुजरात देश में सतत टोच पर रह्यु छे। सरकार उद्योग साहसिको ने टकाउ सुशासन और नीति आधारित राज्य तरीके सुदृढ़ औद्योगिक माळखुं आपे छे। तेनाथी रोजगारीनुं सर्जन, नवीनता ने प्रोत्साहन और नागरिकोना जीवन की गुणवत्ता में सुधारो थयो। आ प्रसंगे विज्ञान और टेक्नोलॉजी मंत्री अर्जुन मोढवाड़ियाए आगामी 5 वर्ष में गुजरात नवा शुरू थई रहेला क्षेत्र में पहला क्रमांके हशे तेवो विश्वास व्यक्त कर्यो। तेमणे सम्मेलन में उपस्थित रोकाणकारों ने हिस्सेदारों ने राज्य में उद्योग शुरू करवा पण आह्वान कर्युं हतुं। राज्यमां गोबरधन योजना अंतर्गत आगामी समयमां 25 करोड़ रूपयाना खर्चे 20,000 व्यक्तिगत बायोगेस प्लांट स्थपाशे। तेनाथी ग्रामीण स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, सेंद्रीय खातरना उपयोग अने गोळाकार अर्थतंत्रने नवी ऊंचाई मळशे। राज्यमां हाल स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत 14,000थी वधु बायोगेस प्लांट कार्यरत छे। गोबरधन योजना ग्रामीण राज्यना हरियाणा भविष्य तरीके स्थापित थई रही होवानुं सत्तावार यादीमां जणाव्युं छे। उल्लेखनीय छे के ताजेतरमां ज केन्द्रीय मंत्रीमंडळे 23,731 करोड़ रूपयाना कुल खर्च साथे राष्ट्रीय सर्क्यूलर बायो एनर्जी स्कीम गोबरधनने मंजूरी आपी छे। कच्छ पोलीसे एक व्यक्ति पासेथी 5 करोड़ रूपयाथी वधुनी खंडणी वसूलवा मामले मुख्य सूत्रधार सहित 5 आरोपीनी पंजाबथी धरपकड़ करी। मळती माहिती मुजब आरोपीओए गांधीधाममां फरियादी व्यक्तिनुं अपहरण करी तेमना भाईने दुबईमां फोन करी खंडणी मांगी हती। आ मामले गांधीधाम ए डिविजन पोलीस मथकमां गुनो नोंधाता पूर्व कच्छ पोलीसे गुजरात आतंकवाद विरोधी दल एटीएस अने पंजाब विशेष कार्यदल एसटीएफ साथे संयुक्त कामगीरी करी 5 आरोपीने पंजाबना भटिंडाथी पकड़ी पाड्या छे। तेमनी पासेथी रोकड़ रकम, यूएसडीटी क्रिप्टोकरंसी, मोबाइल सहित कुल 4,30,00,000 रूपयाथी वधुनो सामान कब्जे करायो। गांधीनगर सीआईडी क्राइम द्वारा मोरबीमांथी शंकास्पद यूरिया खातरनो जत्थो कब्जे करायो। जेतपर रोड पर रंगपर गाम नजीक बंद पड़ेला कारखानानो वखार तरीके उपयोग करातो हतो, ज्यां दरोड़ा पाड़ी 800थी वधु खातरनी गुणी कब्जे करवामां आवी होवानुं मोरबीना नायब खेतीवाड़ी विस्तरण अधिकारी केतन परसाणियाए जणाव्युं।
2: सीआईडी क्राइम

0: कुमार सानू और संजीवनी की आवाज में आप सुन रहे थे करीब फिल्म से एक गीत, राहत इंदौरी के बोल, अनु मलिक का संगीत। कार्यक्रम जयमाला विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला। और अंतराल से ठीक पहले आपने सुना परिणीता फिल्म का गीत। सोनू निगम और साथियों की आवाज थी। स्वानंद किरकिरे के बोल शांतनु मोइत्रा का संगीत। अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

प्रीतम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल की आवाज में। समीर के बोल, इलैयाराजा का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर। जय माला।

0: मोहरा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज है इंदिवर के बोल, वीजू शाह का संगीत। कार्यक्रम जयमाला में अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में रहना है तेरे दिल में। फिल्म से ये गीत समीर के बोल, हरीश जयराज का संगीत।
1: मुझे

आइए सुने कार्यक्रम हवा महल।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं नाटिका हृदय परिवर्तन। ये है ओ हेनरी की मूल अंग्रेजी कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार हैं रमेश उपाध्याय और निर्देशक मधुप शर्मा।
1: मालिक,
2: क्या हुआ हेनरी? इस तरह घबराए भी क्यों हो?
1: गजब हो गया मालिक, केलियो आ रहा है।
2: क्या कहा? केलियो आ रहा है? सत्यानाश, हेनरी, फेडलर, जोजा, तुम लोग फौरन दुकान बंद करो जल्दी। और चार्ल्स, तुम आसपास के लोगों को बता दो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ।
3: जी

0: कहाँ हो मेरी बच्ची? हे भगवान,
1: क्या बात है माँ?
0: चलो अंदर चलो जल्दी, जिम्मी को भी अंदर बुला लो।
1: माँ मेरी साइकिल?
0: बाहर में जाए साइकिल, तुम चलो जल्दी चलो।

0: छिप गए, चूहे कहीं के। सारा बाजार बंद है। पता नहीं इन कमबख्तों को मेरे आने की खबर कैसे मिल जाती है।
1: इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, वो देखिए इधर ही आ रहा है।
2: हाँ ठीक है, देखो तुम तीन आदमी दबे पांव जाकर उसे घेरने की कोशिश करो, बाकी यहीं मेरे साथ रहो। जरा होशियारी से काम लेना, आज बदमाश बचकर निकल न जाए। देखो आवाज जरा भी ना हो, जरा भी लापरवाही की तो मारे जाओगे। जानते हो कैसा अचूक निशाना है उसका?
1: जी, टांग, जान, फ्लिप, आओ मेरे साथ।
0: कैसे मनहूस लोग हैं, मेरी गोली से मरने को कोई तैयार नहीं, कुत्ते बिल्ली। ठीक है तो इन कुत्ते बिल्लियों को मारने में क्या मजा आएगा।
2: इधर आओ, इधर आओ, इन खाली पेटियों के पीछे छिप जाए, वो इधर ही तो आ रहा है। जैसे ही सामने की मोड़ पर आए भून कर रख दो। उधर चला।
0: अच्छा तो पुलिस के कुत्ते आकर मेरे पीछे लग ही गए, कोई बात नहीं, इन्हें भी देख लूंगा। लेकिन ओ, इन्होंने तो मुझे आप कहीं छिप जाओ नहीं तुम्हारे जाओगे। ठीक है, स्टेशन मास्टर के केबिन में ही छिप जाऊं, यही ठीक है। अभी किसी का निशाना इतना सच्चा नहीं कि मुझे गोली लग सके। ठीक है, खबरदार अगर किसी ने मेरा हाथ रोकने की कोशिश की तो भूल कर दूंगा।
2: तो देखो वो स्टेशन की तरफ भाग रहा।
0: फायर।
2: बेकार, बच निकला वक्त, लगता है स्टेशन मास्टर के केबिन में घुस गया। देखा, जरा सी लापरवाही से सब गड़बड़ हो गया। अब वो किसी खिड़की या दरवाजे की दराज से हमारी सारी हरकतें देख सकता है।
1: नहीं हुजूर, यहां पेटियों के पीछे से वो हमें नहीं देख सकता।
2: तुम बेवकूफ हो, आखिर हम यहां छिपे रहकर क्या कर लेंगे? स्टेशन की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, गाड़ी आने का समय हो गया है। जैसे ही गाड़ी रुकेगी वो गाड़ी में जा चढ़ेगा और फिर उसे पकड़ना आसान नहीं। गाड़ी आने से पहले ही उसे पकड़ लेना चाहिए।
1: वो तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वहां तक जाएं कैसे? आड़ लेने के लिए कोई चीज नहीं है, और यूं खुले खजाने गए तो कैलियोप की बंदूक हमें।
2: यही तो परेशानी है। अच्छा एक काम करो, उधर जो ठेला खड़ा है ना उसे आहिस्ता से इधर खींच लो, आवाज जरा भी ना हो।
1: जी अच्छा।
2: और उधर से उनके बोरे भी उठा लो।
1: जी।

0: हाँ ठीक है, अब इस ठेले पर ये बोरे रख दो, ऐसे नहीं ऐसे। हाँ अब दूसरा रखो, ठीक, और तीसरा परली तरफ सीधा खड़ा करके रख दो, यूं जी। अब मैं इन बोरों की आड़ में ठेले को चलाता हुआ स्टेशन मास्टर की केबिन की तरफ जाता हूँ, तुम लोग यहीं रहो, जब तक सीटी न बजाऊं कोई यहां से नहीं ले, यहां बैठकर केबिन के दरवाजे पर निशाना साधे रखो। अच्छा मैं चलता हूं।
1: इंस्पेक्टर साहब मैं भी आपके साथ चलता हूं, अकेले जाना आपका ठीक नहीं है।
0: बच्चों जैसी बातें न करो, इस छोटे से ठेले के पीछे अकेला ही मैं मुश्किल से छिप सकता हूं। अच्छा तुम लोग मुस्तैद रहना।
1: जी
2: स्टेशन मास्टर और उसका असिस्टेंट दोनों ही खिड़की से कूद भागे, बुजदिल। चलो अच्छा हुआ, अब ये केबिन अपना किला है, देखता हूं कौन आता है। ये ठेला इधर कैसे लुढ़कता रहा है। अच्छा समझा, इस ख्याल में हमारे बहादुर इंस्पेक्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं। समझ में नहीं आता कि ये इंस्पेक्टरी क्यों करते हैं। खैर कैली इतना बेवकूफ नहीं है कि इन बोरों पर गोलियां चलाकर अपना बारूद खराब करे, वो आपके सामने आने पर ही आपका स्वागत करेगा। तो जनाब अब आप मेरे निशाने की सीध में आ गए, आइए आइए, जान से नहीं मारूंगा, खोपड़ी पर गोली की एक खरोंच आपको चित करने के लिए काफी है, और इसमें कैली माहिर है। और जब तक आप होश में आएंगे, बंदा गाड़ी में बैठकर आराम से, तो चलो चलिए छुट्टी हो गई, कम से कम 10 मिनट ऐसे ही पड़े रहिए। गाड़ी आ गई, ठीक है अब मुझे चल देना चाहिए, लेकिन सूरत तो ठीक कर लूं, शरीफों की सी है। ये ठीक है, बस इस तरह है। अरे ये तो मेरी माँ इधर आ रही है। ओहो उसने तो मुझे देख भी लिया, वो तो इधर आ रही है, अब क्या होगा। मारे गए, इससे मैं हमेशा चिट्ठियों में लिखता रहा हूँ कि मैं यहाँ पुलिस अफसर हूँ, और आपको मेरी हालत देखेगी तो क्या कहेगी, क्या करूँ। मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह आकर मिल जाएगी। ये ठीक है, माँ के आने से पहले इंस्पेक्टर का बिल्ला उतारकर अपनी कमीज पर लगा लो, बाकी तो ये भी सादे लिबास में है, और मैं भी।
3: क्या हुआ कैली, तूने मुझे देख लिया फिर भी तू मेरे पास नहीं आया, ये क्या, ये आदमी बेहोश हो गया है क्या।
2: माँ ये गुंडा है, इसने शहर के लोगों को बहुत तंग कर रखा था, मैंने इसका पीछा किया तो ये इधर भाग आया। चलो अच्छा ही हुआ न मैं इसके पीछे यहाँ आता, न तुझसे मिल पाता।
3: अरे मैं तो पहले ही जानती थी कि मेरा बेटा बड़ा बहादुर है, आ तो जरा देखे इसे, न जाने ऐसा काम क्यों करते हैं लोग।
2: हाँ मैं यही तो मैं भी सोचता हूँ।
3: अरे कैली ये मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश हो गया है, जल्दी से रुमाल गीला कर ला, इसके मुंह पर पानी के छींटे मार।
4: अभी लाया, ये लो ये लो।
3: बस अभी होश में आया जाता है
4: लगता है।
3: होश में आ रहा है। अरे वाह गोली ने तो शायद छुआ भी नहीं, बस जरा सी खरोंच लगी और तू बेहोश हो गया, मामूली सी खरोंच है जल्दी ही ठीक हो जाएगी। क्यों अब कैसा लग रहा है। बस बस बस जरा ऐसे ही लेटा रहे, मैं तेरा सिर धो देती हूँ।
1: कौन किया।
3: मैं इंस्पेक्टर कैलियोक की माँ हूँ, अल्बामा से इसी गाड़ी में आई हूँ, 8 साल से मैंने अपने कैली को देखा नहीं था, न कैली मुझसे मिलने गया न मैं आ सकी। रेलवे में मेरा भांजा प्राइस एक

0: क्लर्क है, उसने मुझे यहाँ तक का एक पास बनवा दिया। एक हफ्ते यहाँ रहूंगी, फिर उसी पास से लौट जाऊंगी। अरे बस भी कर अब। देख मेरा बेटा कितना अच्छा है कि उसने तुझे जान से नहीं मारा, तभी तो इतनी तरक्की कर गया है, इंस्पेक्टर हो गया है। अरे केली, तूने इंस्पेक्टर होने की बात तो कभी नहीं लिखी। खैर क्यों भैया, उठकर बैठ जाओ, मेरे तो हाथ भी थक गए तुम्हारा सिर सहलाते।
1: बस बस माँ जी, रहने दीजिए, मैं अब ठीक हूँ। केली जरा सहारा देकर मुझे बैठा दो।
2: अभी तक तुम्हारी अकड़ नहीं गई, इंस्पेक्टर केली आप क्यों नहीं कहते?
1: ओह गलती हो गई।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन अब बदमाशी मत करना, मुझे सब पता चल गया है। जब तू बेहोश था केली ने मुझे सब बता दिया है। और देख मेरे बेटे ने तुझ पर गोली चलाई, इस बात का बुरक मत मानना, ये तो उसका कर्तव्य था। अगर वो ऐसा ना करे तो तेरे जैसे लोग दुनिया के नाक में दम ना कर दें। मेरा कहना मान, तू अब शरीफ आदमी बन जा मेरे केली की तरह।
1: क्यों इंस्पेक्टर केली, मान जी शायद ठीक ही कहती है।
2: हाँ इसमें क्या शक है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो माँ की हर बात सिराखों पर लेता, माँ से फौरन माफी मांग लेता और प्रतिज्ञा करता कि माँ आइंदा ऐसा काम मैं कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा।
0: देखा तूने मेरे बेटे के ख्याल कितने ऊंचे हैं, इसी से कुछ सीख। हाय राम, मैं अपना ट्रंक तो प्लेटफॉर्म पर ही छोड़ाई, केली को देखकर ऐसी इधर भागी कि ट्रंक का ध्यान ही नहीं रहा, कोई ले ना गया हो। लेकिन जाएगा कहाँ, मेरा बेटा इंस्पेक्टर है, मैं अभी लेकर आती हूँ।
1: क्यों बच्चू, माँ के सामने इंस्पेक्टर बन गए और मुझे केली ऑफ जैसा गुंडा बना दिया।
2: मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मेरे सामने और कोई रास्ता ही नहीं था। मेरी माँ मुझे बहुत नेक और लायक बेटा समझती है, वो मेरी बदमाशियों के बारे में कुछ भी नहीं जानती।
1: तो तुम सचमुच अच्छे और लायक बेटे क्यों नहीं बन जाते?
2: मैं कसम खाकर कहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, अब से मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। अपने को माँ की नजरों में अच्छा बनाए रखने के लिए मैंने कबीला अपनी कमीज पर नहीं दिखा सकूंगा। ठीक है ठीक है, ये लीजिए।
1: चलो ठहरो, बिल्ला अपनी कमीज पर ही लगा रहने दो, और जब तक माँ जी यहाँ रहे उसे लगाए रखना। जब तक वो यहाँ रहेंगी तुम इंस्पेक्टर रहोगी, मैं सब सिपाहियों को समझा दूंगा, कोई तुम्हारा भेद नहीं करेगा, लेकिन माँ के आदेश का पालन।
2: जा वो ठीक है, अगर मैंने उसके आदेश का पालन न किया तो मुझ जैसा नीच कोई नहीं होगा, फिर आप मुझे जो चाहे।
1: माँ जी आ रही है।
2: ठीक है, वो तो मैं भी देख रहा हूँ,
1: मैं फिर कराने लगता हूँ। पर तुम अपना वादा याद रखना।

हृदय परिवर्तन अभी आप सुन रहे थे ये नाटिका। ओ हेनरी की मूल अंग्रेजी कहानी का ये था हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। रूपांतरकार थे रमेश उपाध्याय और निर्देशक थे मधुप शर्मा। ये थी आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक के लिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: वाह, तमारा कपड़ा नो फिटिंग तो जोरदार छे ना।
2: थैंक्स टू व्हाइट हाउस, एमनी फिटिंग ने साथे एमनी ऑफर पण जोरदार छे।
1: कई ऑफर?
2: जहाँ प्रख्यात ब्रांड्स ना कपड़ा नी खरीदी पर पैंट अने शर्ट स्टिचिंग फ्री छे।
1: बस एटलूज?
2: पांच पैंट शर्ट स्टिच करावो अने मेड़वो रुपया 5,000 सुधी नी बचत।
1: तो हवे घरवाड़ी नी शॉपिंग पण पाकी।
2: व्हाइट हाउस, प्रीमियम फिटिंग, स्मार्ट सेविंग्स एट रावपुरा।

आपने ट्यून किया है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हाजिर हैं हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।

शहनाई खुशियों की बजेगी, सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी, सुन लो काली सी शब के पार से, देखो चंदा की हमें झलक दिखेगी।

0: जॉली एलएलबी 2 फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। जुबीन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजें, जुनैद वसी ने इसे लिखा और चिरंतन भट्ट ने संगीत से सजाया।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजें, गरिमा सिद्धार्थ के बोल, विक्की प्रसाद का संगीत। कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से अंतराल का।

0: स्वानंद किरकिरे और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में आप सुन रहे थे लुटेरा फिल्म से ये गीत। अमित त्रिवेदी ने संगीत से सजाया, अमिताभ भट्टाचार्य ने इसे लिखा।
1: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
2: वंदे मातरम।
1: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
3: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
1: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

लव शावते चिकन खुराना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। देवेंद्र सिंह और साथियों की आवाज, शैली के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर और कार्यक्रम है चित्रलोक।

हंसी तो फंसी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सनमपुरी और शिप्रा गोयल की आवाजें, कुमार के बोल, विशाल शेखर का संगीत। इसके साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में समाचार अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना।

0: मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
3: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमरीका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
3: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
0: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका

0: का फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौतों पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
1: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गयी। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान एनएफडीसी ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि एनएफडीसी और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फंड के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी।

0: समाचार रांची।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
0: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए।

0: एक फूल दो माली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, प्रेम धवन के बोल, रवि का संगीत।
1: हार्मोन हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विविध भारती पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदादा आपको बताएंगे हार्मोन्स के असंतुलन के बारे में और इसके बाद हुई हड्डियों से जुड़ी समस्याओं के बारे में।
2: हमारी जो डिसऑर्डर्स है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हॉर्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं।
1: 10 अगस्त शाम 4 बजे और 11 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सेहतनामा।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया और आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आपने सुनी।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी

0: आशा भोसले की आवाज में हमसाया फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। ओपी नैयर का संगीत, शिवन रिजवी के बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर आपके लिए।
1: कौन है जो

0: झुक गया आसमां फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।
1: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
2: वंदे
1: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
3: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
1: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

हर रोज शाम सुनिए सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत, जिसके प्रायोजक है विको वज्रदंती, मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

आशा भोसले की आवाज में नरम गरम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर और कार्यक्रम का नाम है आपके लिए।

तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। संगीत का ये सुरीला सफर आपने तय किया अपनी दोस्त नेहा शर्मा के साथ, और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सन 1947 भारत का विभाजन हो रहा था। एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाला एक प्रोडक्शन मैनेजर लाहौर से मुंबई की तरफ रवाना हो रहा था। जाने माने शायर कतील शिफाई उसके दोस्तों में से एक थे। दो दोस्त जुदा हो रहे थे और शायर दोस्त ने अपने फिल्मी दोस्त से विदा लेते हुए उसे एक शेर उपहार में दिया। कतील शिफाई ने एक पर्ची पर लिख कर दिया था, उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी हरजाई की। ये पर्ची उस लड़के ने संभाल कर रख ली। देश के विभाजन के वक्त लाहौर से मुंबई आने वाला वो प्रोडक्शन मैनेजर था जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश आगे चलकर फिल्मी दुनिया के एक बड़े निर्माता और निर्देशक बने। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई।

जे ओम प्रकाश का जन्म 24 जनवरी 1927 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब भारत अविभाजित था। ओम प्रकाश के पिता लाहौर के एक स्कूल में टीचर थे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को उसूल सिखाए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में तमाम उपलब्धियों से बढ़कर हैं आपके उसूल। पिता हमेशा बेटे से कहा करते थे कि आपको हमेशा जिंदगी में सीखते रहना है, ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और कभी ये मत मानो कि तुमने सब कुछ जान लिया है। और जानने की लालसा जिंदगी में बनाए रखना, देखना तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ओम प्रकाश लाहौर में एक फिल्म प्रोड्यूसर के दफ्तर में क्लर्क बन गए। बहुत लगन के साथ काम किया और फिर वो मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचे, यानी धीरे धीरे उनकी तरक्की होती चली गई। दिल में

0: पंछी।
1: हमने आपको बताया कि विभाजन के बाद जे ओम प्रकाश मुंबई आ गए। ये वो दिन थे जब उनकी जिंदगी का संघर्ष चल रहा था। संघर्ष के इन दिनों की रातें जे ओम प्रकाश लोकल ट्रेनों में सोकर बिताते थे। दादर से ट्रेन में बैठते, ट्रेन कल्याण तक जाती और फिर दादर वापस आती। जे ओम प्रकाश उस ट्रेन में ऊंघते रहते। जब पुलिस वाले देख लेते तो भगा देते थे, उतार देते थे। मुसाफिर थे जे ओम प्रकाश, चलते चले जाते थे लोकल ट्रेनों में अपनी मुफलिसी के दिनों में।

संघर्ष के इन दिनों में जे ओम प्रकाश को निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की कंपनी में काम मिल गया। ये वो दिन थे जब मोहन सहगल न्यू दिल्ली फिल्म बना रहे थे। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में जे ओम प्रकाश चिंचपोकली नाम के एक इलाके में चौल में रहा करते थे। अभिनेता राजेंद्र कुमार भी उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और वहीं उनके साथ रहा करते थे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब वो फिल्म उद्योग में बड़ा नाम बन जाएंगे तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये वादा पूरा भी हुआ। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर लगातार काम करते रहे और उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिल्में बनाने के हर पहलू पर गौर किया, उसे सीखा और उसमें माहिर बन गई।

60 के दशक का वो जमाना जब जे ओम प्रकाश के भीतर एक सपना पल रहा था, और वो सपना था प्रोड्यूसर बनने का सपना। उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की कि कोई ऐसा फाइनेंसर हो जो पैसे लगाने के लिए राजी हो जाए और उनकी फिल्म बन जाए। बहुत संघर्ष के बाद जब कहीं कोई उम्मीद नहीं बची थी, अचानक एक दिन फाइनेंसर का फोन आया, वो फिल्म में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए। इस तरह से 60 के दशक में जे ओम प्रकाश ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, फिल्म युग। फिल्म युग की पहली फिल्म आई आस का पंछी। इस फिल्म के हीरो थे वही राजेंद्र कुमार जो चिंच पोकली के संघर्ष के जमाने में जे ओम प्रकाश के साथ रहा करते थे। हीरोइन थी वैजयंती माला, संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक बनाए गए मोहन कुमार, जो मोहन सहगल के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म आस का पंछी जबरदस्त हिट रही और एक प्रोड्यूसर के तौर पर जे ओम प्रकाश और फिल्म युग छा गए।

0: तक चले।
1: इसके बाद मोहन कुमार के ही निर्देशन में जे ओम प्रकाश ने अपने प्रोडक्शन हाउस फिल्म युग की दूसरी फिल्म पेश की, जिसका नाम था आई मिलन की बेला। ये फिल्म सन 1964 में आई थी। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे।
0: आहा, आई मिलन की बेला देखो आई बनके।

सन 1966 में जे ओम प्रकाश ने एक नए निर्देशक को मौका दिया। ये निर्देशक थे रघुनाथ झालानी, जो उन दिनों में बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। रघुनाथ झालानी ने बनाई

सन 1969 में रघुनाथ झालानी ने ही बनाई आया सावन झूम के। ये भी जे ओम प्रकाश की एक बहुत जबरदस्त फिल्म थी।

आपको बता दें कि जे ओम प्रकाश अक्सर ही नई प्रतिभाओं को मौका दिया करते थे। उन्होंने रघुनाथ झालानी को मौका दिया बतौर निर्देशक, जिन्होंने आए दिन बहार के बनाई। रघुनाथ झालानी बिमल रॉय के सहायक निर्देशक हुआ करते थे। इसी तरह उन्होंने मुकुल दत्त को मौका दिया और निर्देशन की दुनिया में उनका पहला कदम बना आन मिलो सजना।

सचिन भौमिक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे। उन्हें निर्देशन की दुनिया में मौका दिया जे ओम प्रकाश ने और फिल्म आई राजा रानी। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों के नाम हमेशा अ से हुआ करते थे। ये उनका एक अंधविश्वास था कि अगर वो फिल्मों के नाम अ से रखेंगे तो वो फिल्में ज्यादा चलेंगी। इत्तेफाक ये भी हुआ कि दो ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जिनके नाम अ से नहीं थे और वो ज्यादा नहीं चली, सचिन भौमिक के निर्देशन वाली राजा रानी और फिल्म भगवान दादा। ये दोनों फिल्में जे ओम प्रकाश के प्रोडक्शन से आई थीं और इनका नाम अ से नहीं था। वैसे अ से फिल्मों के नाम शुरू होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का ताल्लुक उसी घटना से है जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताई थी। सन 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब जे ओम प्रकाश के दोस्त मशहूर शायर कतिल शिफाई ने जुदा होते हुए एक पर्ची पर एक शेर लिखकर दिया था जे ओम प्रकाश को। कतिल शिफाई ने ये कहा था कि तुम चाहो तो इस शेर का इस्तेमाल आगे चलकर अपनी फिल्मों के लिए कर लेना। सन 1960 के जमाने में जब जे ओम प्रकाश प्रोड्यूसर बने और अपनी पहली फिल्म बनाने लगे, तो जो कहानी उनके पास थी वो थी एक नौजवान की कहानी जो फौज में जाना चाहता है और उसके परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। इस फिल्म का नाम उन्होंने कतिल शिफाई के इस शेर में से ही लिया, आस का पंछी। आगे चलकर कतिल शिफाई ने जे ओम प्रकाश को चिट्ठी लिखी और कहा, देखा मेरा शेर तुम्हारे कितने काम आया।

जी ओम प्रकाश फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से डूब जाना चाहते थे, यानी फिल्म बनाने के हर पहलू पर जुनून की हद तक उनका ध्यान था। चूंकि वे फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उनकी रचनात्मक प्यास अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझ रही थी और इसके लिए उन्होंने निर्देशक बनने की ठानी। सन 1973 में वो निर्देशक बन गए फिल्म आपकी कसम के जरिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार। वैसे आपको बता दें, आपकी कसम सन 1970 में आई के एस सेतु माधवन की फिल्म वजवे मायम पर आधारित थी, लेकिन ये जे ओम प्रकाश की फिल्मी समझ थी कि उन्होंने मूल मलयालम फिल्म के अंत को बदल दिया। मूल मलयालम फिल्म में पति और पत्नी दोनों ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जे ओम प्रकाश ने फिल्म आपकी कसम का अंत कुछ इस तरह से रखा कि पति पत्नी के कदमों में अपना दम तोड़ता है और इस तरह से वो अपना प्रायश्चित करता है।

जाने माने निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा ने आपकी कसम को देखकर ये कहा था कि ये फिल्म किसी नए नवेले निर्देशक का काम नहीं लगती, बल्कि एक बहुत पके हुए और समझदार निर्देशक का काम लगती है। जे. ओम प्रकाश ने इसके बाद बनाई आंखों आंखों में।

फिल्म युग हमेशा अपनी सामाजिक फिल्मों के लिए जाना जाने वाला फिल्म बैनर रहा। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो परिवार के साथ देखी जा सकें या जिनमें कोई सामाजिक पहलू हो। जे ओम प्रकाश ने इस तरह से मनोरंजक और खुशनुमा फिल्में बनाने वाले एक निर्माता निर्देशक के तौर पर अपना नाम स्थापित कर लिया था। सन 1975 में उन्होंने निर्देशन किया फिल्म आक्रमण का। सन 1975 जे ओम प्रकाश के करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण साल बन गया जब उन्होंने कमलेश्वर की कहानी पर गुलजार के निर्देशन वाली फिल्म प्रोड्यूस की

इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुचित्रा सेन और संजीव कुमार। सन 1977 में जे ओम प्रकाश ने फिल्म अपनापन का निर्माण और निर्देशन किया। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश ने बाहर की कई फिल्मों का निर्देशन किया, यानी ऐसी फिल्में जिन्हें उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था। ऐसी ही एक फिल्म थी सन 1977 में आई आशिक हूं बहारों का। सन 1981 में आई फिल्म आसपास के निर्देशक जे ओम प्रकाश ही थे। इस फिल्म की एक खासियत आपको बता दें, मशहूर गायक मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनका जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया गया था वो फिल्म आसपास के लिए ही किया गया था। सन 1980 में जे ओम प्रकाश ने बनाई अपनी जबरदस्त कामयाब फिल्म आशा।

सन 1982 में अपना बना लो, सन 1983 में आई अर्पण, 1985 में आपके साथ।

अजय ओम प्रकाश ने इस बीच में कई फिल्में बनाई जिनमें से कुछ बहुत कम चली और कुछ नहीं चली। सन 1993 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म का निर्देशन किया था जिसका नाम था आदमी खिलौना है। जे ओम प्रकाश अपने फिल्मी करियर में इम्पा के प्रेसिडेंट रहे, इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट भी रहे और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी उन्होंने जमकर काम किया। वो फिल्मी दुनिया से रिटायर हो चुके कलाकारों के कल्याण में लगे रहे थे।

0: शूद आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

0: सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: छाया गीत के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का नमस्कार। बरसात से प्रेम का अटूट नाता है। कहते हैं प्रेम कभी शब्दों का मोहताज नहीं होता। प्रेम तो एक एहसास है जो कभी किसी मुस्कान में उतर आता है तो कभी किसी खामोशी में, कभी किसी खत की स्याही में और कभी बरसती हुई बारिश की हर बूंद में।

प्रेम जब होता है तो मौसम बदलने लगते हैं, धूप नरम लगने लगती है, चांद कुछ ज्यादा ही अपना सा लगने लगता है और हवा जैसे किसी का नाम कानों में घोलकर गुजरने लगती है और बरसात की हर एक बूंद हम पर ऐसे बरसती है जैसे किसी का प्रेम बरस रहा हो।

बरसात में आसमान भी खुलकर प्यार बरसाता है और धरती भी उसे अपनी खुली बाहों में तड़पकर समेट लेती है। बरसात की हर एक बूंद जैसे किसी अधूरे ख्वाब की कहानी कहती है।

अंतराल के बाद छाया गीत में आपका फिर से स्वागत है। बरसात पुरानी यादें ताजा कर देती है, तो कभी खिड़की या छत पर गिरती बूंदे किसी की दस्तक देने लगती है और भीगी हुई मिट्टी की खुशबू किसी पुराने मिलन की याद बन जाती है।

रात की तन्हाइयों में जब बारिश की धीमी फुहारें खिड़की से टकराती हैं, तब दिल भी किसी का नाम लेकर मुस्कुरा देता है। चांद बादलों में छिपा होता है, तब भी उसकी रोशनी दिल को रोशन कर रही होती है। ठीक वैसे ही जैसे सच्चा प्रेम दूर होकर भी दिल को वैसे ही धड़काता है जैसे महबूब सामने ही बैठा हो।

प्रेम में मिलना जितना सुंदर होता है, विरह उतना ही गहरा दर्द वाला। दूरियां प्रेम को कम नहीं करती, बल्कि और बढ़ा देती हैं। बिछड़कर भी प्रेमी एक दूसरे के लिए जब दुआ बन जाएं, तो ऐसा प्रेम अमर हो जाता है। कुछ रिश्ते साथ होकर भी अधूरे रह जाते हैं और कुछ दूर रहकर भी पूरी जिंदगी का सहारा बन जाते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
1: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
2: जहां तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दुनिया में कई ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमरीका भी शामिल है जो विदेशी

0: कोष को विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गो में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से में बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 पीएचडी शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कम्प्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों की रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both Houses of Parliament today witnessed opposition's uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the knee tissue. Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition's uproar over several issues, including police action during students' protest over the knee tissue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the Houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition's uproar, question hour could not be taken up in both the houses. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the policy of cross-border terrorism and using terrorism as an instrument of state policy against India. The minister said India withdrew Most Favoured Nation or MFN status to Pakistan and hiked customs duty on all goods originating in or exported from Pakistan to 200% after the Pulwama terror attack. India attaches high priority on safety and security of Indian vessels and seafarers. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this during a media briefing in New Delhi today, adding that Indian missions all